प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में ब्रिटिश NSA जोनाथन पावल से मुलाकात करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में कोंगो डीआरसी में एक झील पर नाव पलटने से 41 लोगों की मौत हो गई और 49 को बचा लिया गया, जबकि लापता यात्रियों की तलाश जारी है। और आखिर में चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 15 से 17, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज

ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। News on NBC Play.

বেলা রাজগি ভারি শুরুয়াত। ভোর কি বেলা রাজগি ভারি শুরুয়াত।

0: प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चले समय सुबह के 6:03 हो चुके हैं। इस शुक्रवार को साथ निभा रही है पूजा। ये MBC रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है जिंदगी में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा व्यवहार है, क्योंकि यही लोगों के हृदय में आपकी सुंदर पहचान बनाता है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत।

प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी श्रोताओं को सादर नमन एवं प्रेम पूर्वक हरिस्मरण। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आज फ्राइडे 25 सितंबर के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम अत्यंत विशेष, क्योंकि आज हम एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत महिमा, व्रत और श्रद्धा का संदेश तो है ही, साथ साथ हम बात यह भी करेंगे आने वाले पितृपक्ष के विषय में, जो हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज हम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी या अनंत व्रत जैसे हम लोग कहते हैं, यह पावन व्रत अनंत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अनंत अर्थात जिसका न आदि है और न अंत, जो स्वयं अनंत है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है। यह सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, संकल्प और विश्वास का प्रतीक माना जाता है।

मान्यता है कि अनंत भगवान का स्मरण और अनंत सूत्र का धारण मनुष्य को भय, संकट और जीवन की कठिन परिस्थितियों में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इस व्रत की पूजा प्रायः मध्याह्न काल में की जाती है। व्रती को प्रातः नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प करें। यदि सुविधा हो तो नदी या किसी पवित्र जलाशय के किनारे पूजा की जाती है, अन्यथा अगर नहीं है तो घर पर अथवा मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष श्रद्धापूर्वक पूजा संपन्न की जा सकती है। पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को सुंदर आसन पर विराजमान किया जाता है। शेषनाग की भावना के साथ कुश से बने सात फणों वाले शेष स्वरूप को भगवान के पीछे स्थापित करने की भी परंपरा है। इसके बाद भगवान का आवाहन करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा की जाती है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और लड्डू, मालपुआ, केले तथा अन्य सात्विक पदार्थों का भोग अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात अनंत सूत्र को भगवान के समक्ष रखकर उसका पूजन एवं मंत्रोच्चारण के साथ संस्कार किया जाता है। अनंत सूत्र में सामान्यतः 14 घाटे लगाई जाती है। इन गांठों का जो प्रतीक है वह भगवान की अनंत शक्ति, 14 लोकों का तथा भगवान विष्णु की विधविध दिव्य स्वरूप के प्रतीक के रूप में श्रद्धापूर्वक देखा जाता है। प्रत्येक गांठ हमें यह स्मरण कराती है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की व्यवस्था के अधीन है और हमारा जीवन भी उसी परम शक्ति के संरक्षण में है। पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, संकट और बाधाओं को दूर करें और हमें धर्म, सत्य, सदाचार तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अनंत सूत्र धारण करते समय यह मंत्र बोला जाता है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम सभयाधुर वासुदेव अनंत रूप विनियोजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान वासुदेव से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस अनंत संसार रूपी महासागर में डूबे हुए हैं, इसलिए हे अनंत भगवान, हमारा उद्धार कीजिए और अपने अनंत स्वरूप में हमें आश्रय प्रदान कीजिए। हे अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। पुरुष सामान्यतः दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करती है। इसे भगवान के प्रति श्रद्धा और संकल्प के प्रतीक के रूप में धारण किया जाता है। परंपरा के अनुसार पिछले वर्ष धारण किए हुए पुराने सूत्र का विधिपूर्वक विसर्जन करके नया अनंत सूत्र धारण किया जाता है। जहाँ पवित्र जल में विसर्जन की सुविधा ना हो, वह धार्मिक परंपरा के अनुसार उस पिछले वर्ष का अनंत सूत्र जो है पूरे सम्मान के साथ उसको जलाया जाता है। अनंत चतुर्दशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाभारत से भी संबंधित है। कहा जाता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य और वैभव खोकर अपने भाइयों तथा द्रौपदी जी के साथ वन में कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत भगवान की आराधना और अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व बताया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने श्रद्धापूर्वक भगवान अनंत की पूजा की। इस कथा का मूल संदेश यही है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर श्रद्धा, धर्म के मार्ग पर आस्था और धैर्य

0: मनुष्य को भीतर से शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी केवल एक सूत्र बांधने का पर्व नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि संसार परिवर्तनशील है लेकिन परमात्मा अनंत है। धन पद सुख और परिस्थितियां आती जाती रहती है लेकिन भगवान का नाम और उनका आश्रय ही मनुष्य के जीवन का सच्चा आधार है। व्रत की पूर्णता पर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को अन्न वस्त्र मिठाई तथा द्रव्य आदि का दान करना चाहिए। व्रत का वास्तविक फल केवल किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति में नहीं बल्कि मन की शुद्धि, संयम, सेवा, दान और भगवान के प्रति भक्ति में है। इसके बाद कल शनिवार 26 सितंबर सैटरडे 26 सितंबर भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन स्वयं में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह हमें अपने जीवन में पूर्णता, शांति, साधना और हरि स्मरण का संदेश देता है। इसके पश्चात एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवधि प्रारंभ होती है, महालयी अर्थात पितृपक्ष। रविवार 27 सितंबर संडे 27 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ होगा जो इस वर्ष 10 अक्टूबर तक रहेगा। यह समय हमारे लिए अपने दिवंगत पूर्वजों और पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है। पितृपक्ष में जो इसके पीछे अर्थ है, इस शब्द में ही हमारी संस्कृति की एक महान भावना छिपी हुई है, कृतज्ञता। हम आज जो कुछ हैं उसमें हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अर्थात हमारे पूर्वजों का योगदान है। उन्होंने अपने जीवन दिया है हमारे सुख शांति के लिए। हमें केवल जीवन नहीं अपितु संस्कार दिए हैं, परिवार और परंपराएं दी है। इसलिए सनातन धर्म ने वर्ष में एक विशेष अवधि ऐसी रखी है जिसमें हम अपने पितरों का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष को महालय पक्ष भी कहा जाता है। इस अवधि में हम अपने सामर्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, अन्नदान आदि जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। पितृपक्ष में अपने पारिवारिक परंपरा और योग्य आचार्य के मार्गदर्शन अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करना चाहिए। सामान्यतः जिस तिथि को पिता का देहांत हुआ हो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई भी समझाता है। हम इस संसार में अकेले नहीं आए हैं, हमारे पीछे पीढ़ियों की एक पूरी परंपरा है और आने वाली पीढ़ियां भी हमारे कर्मों से प्रभावित होंगे। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को याद करने के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे संस्कार छोड़ने चाहिए। तो आइए आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में धर्म स्थापित हो, हमारा जीवन धर्ममय बने, हमारे परिवार में सुख शांति और सद्भाव बने रखे और जब पितृपक्ष आरंभ हो तो हम अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, उनके नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें, दान पुण्य करें और संकल्प लें कि हमें जो संस्कार अपने पूर्वजों से मिले हैं उन्हें हम अगली पीढ़ी तक अवश्य पहुँचाएंगे। इस प्रार्थना के साथ हिंदू महासभा की ओर से एवं अपनी ओर से आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, भाद्रपद मास पूर्णिमा की मंगल कामनाएं तथा आगामी पितृपक्ष के लिए श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेके चलता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम, श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठ

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सैपुल और फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है। खासतौर पर रघुत सैपुल, बिशौलेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सोमिल लेन, इदको किरिन एवेन्यू, मोसलमो नोएल, एम्पास गुमानी और बालगुबिन लेन, उस्मान एवेन्यू, अली जैक स्ट्रीट, एम्पास लोरियों, मोसलमो शाम्बो, मोसलमो सुब्राची, किनिक लेन नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, CWA सैंपल के आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।

श्रोताओं, कुछ भक्ति गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉर्शस की लहरों पर श्रोताओं कहा जाता है कि जीवन में अगर आप दूसरों से अपेक्षा रखेंगे, इंसानों से आप अपेक्षा रखेंगे, तो आप हमेशा निराश हो जाएंगे। अपेक्षा रखनी है तो अपने आप से और परमात्मा से। आइए इसी भजन के साथ, इसी गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। साथ रहिए, 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को शुभ शुक्रवार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, 25 सितंबर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में ब्रिटिश एनएसए जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगी। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में कोंगो में एक झील पर नाव पलटने से 41 लोगों की मौत और 49 को बचाया गया, जबकि लापता यात्रियों की तलाश जारी। मॉरिशस की शागस पर संप्रभुता गैर समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यह प्रतिक्रिया दी है। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगे, विशेष रूप से ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगे। बालाक्लावा में यूरोलॉजी पर एक सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री ने यह बयान दिए, उनको सुनते हैं।
2: Nous souveraineté non négociable, pas qu'à négocier le souveraineté. Moi, mon quoi de quoi être diplomatie. Vous savez, causer, là, mon père l'Angleterre, vous joignez Jonathan Powell.

0: a national security advisor. Il fait prendre contact quand on va vous demander exact. Vous avez aussi des autres dimoun, l'autre gauche.
1: सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में ये याद दिलाया गया है कि

0: आई हैं जब करदाताओं को जल्द ही अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए एक सवाल उठता है, जब किसी दूसरी गतिविधि से आय होती है तो एमआरए ये कैसे सुनिश्चित करती है कि उसका सही डिक्लेरेशन किया गया है? चलिए जानते हैं प्रणव बिहारी की रिपोर्ट में, विवरण रजनी भी करता है।
1: कंसल्टेंसी कार्रवाई की एक दूसरी नौकरी, फ्रीलांस काम करना या फिर किसी अध्यापक की ओर से ट्यूशन देना, इन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होती है इसके बारे में बताना ही चाहिए, डिक्लारेशन करना चाहिए। एमआरए में मीडियम एंड स्मॉल टैक्सपेयर्स डिपार्टमेंट के टीम लीडर बंदिश भंडो ने कहा कि इसके लिए पैसे नकद तरीके से चुकाए जा सकते हैं या फिर ज्यूस एप्लीकेशन के जरिए। उन्होंने कहा,
2: ici à la MRE, une chaîne communiquée en mois dernier pour informe le public qui paiement par cash n'est pas un problème, mais la
1: यहाँ एमओरे में एक विज्ञप्ति निकाली गई पिछले महीने ही, जिसमें जनता को सूचित किया गया कि नकद पैसे चुकाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये पैसे मिल रहे हैं उन्हें प्राप्त सभी आय के बारे में बताना ही होगा, जूस हो, कैश हो या फिर बैंक ट्रांसफर्स हो, उसे अपने रिकॉर्ड्स रखने ही चाहिए और जब एमओरे इसकी मांग करेगा तो ये दिखाना होगा।
2: Bien détaillé et quand MRE pour demander les vins produits à certains records.
1: अगर कोई बाहरी गतिविधि के बारे में नहीं बताया गया हो तो MRE टैक्सपेयर की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए कई नियंत्रण माध्यम है। एक अन्य इकाई है इंटेलिजेंस यूनिट, और इसके अवसर दौरा करती है और शिकायतों तथा देश भर में अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जानकारियां एकत्र करती है, जैसे FCC है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अपने खुद का एनालिसिस करते हैं अंदरूनी जानकारियों के आधार पर। उन्हें सरप्राइज विजिट भी कहा जाता है, जो अफसरों द्वारा किए गए दौरों में शामिल है। व्यवसाय स्थल पर सीधा जाते हैं जहां जांच की जाती है, रिकॉर्ड्स देखते हैं, साथ में ये भी कि बिजनेस कैसे चल रहा है। नॉन डिक्लेयर्ड आय के मामले में टैक्स पेयर को टैक्स चुकाना होगा। ऑपरेशनल सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर अजहर जुम्मन ने समझाया कि इसके अलावा सूद और पेनाल्टी भी चुकानी होगी। रेवेन्यू लॉज के अंतर्गत जैसे कि इनकम टैक्स, VAT आदि, अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारियां दी या फिर अंडर डिक्लेरेशन हो तो अपराध है। कोई आम नागरिक हो तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। कानून में ये सब स्पष्ट है, इस सिलसिले में एक विज्ञप्ति जारी की गई है। संबंधित टैक्स पेयरों के लिए अब से कुछ सप्ताह में उन्हें टैक्स भर देना होगा। 30 जून 2026 तक की आय को लेकर टैक्स फॉर्म भरने और टैक्स चुकाने के लिए अगले 15 अक्टूबर 2026 तक का समय है।
0: भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रसभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही है। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रेओल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। मीगान पुनापनायकन, गीता सुनारायण।
3: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट पिछले अगस्त के अंत में मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट की सरिता बुधु द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद तैयार की गई। उनका कहना था कि मॉरिशस की पूर्वजों से चली आ रही भाषाओं को राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशियन को शामिल करने के लिए बनाए गए सिलेक्ट कमेटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है। अपने पोजीशन पेपर में आयोग ने सबसे पहले कहा कि धारा 16 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने सिफारिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही क्रेओल मॉरिशियन से जुड़े काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सजीत बुलेल कहते हैं,
4: Mauricien, citoyen, du monde qui promouvoir que ce soit ma langue ancestrale ou autre, vingt-cinq cents déposés, parce que c'est le corridor de représentation.

0: kena. À part ça, pas pour une seconde. Donc, pour nous, l'emphase, c'est interprète le terme of reference de façon bien élargie. Parce que pour beaucoup d'immunes, on peut penser que, comment dire, il y a un risque de marginaliser la langue ancestrale, un contre l'autre. Ça a l'impression-là pour dissiper quand nous considérons cette représentation. C'est moi, nous peut dire aussi que de fois pas langage vient un outil communal, pas rentre dans sa la trappe-là. Langage, c'est nos héritages nationaux.
1: औपचारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि 89% आबादी ख्योल मवेशियाँ बोलती हैं, 8.6% लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, 5.6% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि केवल 1.3% लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो संसद की आधिकारिक भाषा है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान की धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जा सके।
0: Nous sommes décideurs politiques, l'État, vient avec un amendement du section 16, que ce soit maintenant ou que ce soit après un exercice de la Constitution Review Commission, mais la section 16 vient révisiter pour qui le terme langage fait partie d'une demande prohibition contre toute forme de discrimination.
1: इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से ये भी जांच करने को कहा है कि संसद में अंग्रेजी के इस्तेमाल और फ्रेंच के इस्तेमाल की अनुमति संविधान की धारा 1 के अनुरूप है या नहीं।
2: राज्यसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग कल दोपहर बाद हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल करने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। याचना मिश्रा।
3: हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि भोजपुरी मॉरिशस की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4: Nous sommes un pays multiracial, mauricien. La langue principale c'est créole qui nous compte, mais après créole c'est bhojpuri. Dans la campagne surtout, beaucoup de monde cause bhojpuri. Beaucoup de communautés causent Bhojpuri. Si nous acceptons Bhojpuri là, alors nous avons un vieux Jimoun capable de comprendre qui peut passer dans le Parlement. Nous pouvons laisser l'autorité travailler de toute l'indépendance qui nous a pu faire pression et nous pouvons faire une demande.
3: संगठन ने सरकार से अपील की कि इस मांग पर विचार किया जाए और राष्ट्रीय सभा में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं।
2: आप जो खा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्पादों में अवैध पदार्थ पाए जा सकते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, विशेष रूप से गमीज, बिस्कुट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। देश के मध्य भाग में चलाए गए एक अभियान के दौरान आजसु ने कुछ कुकीज जब्त की और वैज्ञानिक विश्लेषण से ये पता चला कि इन उत्पादों में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे। पिछले साल के एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को हवाई अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान कई संदेहास्पद वस्तुएं जब्त की गई थी, जिनमें विशेष रूप से गमीज और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स शामिल थे। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा की गई जांच से हाल ही में इस बात की पुष्टि हो गई है कि इन उत्पादों में सिंथेटिक ड्रग और कैनाबिस मौजूद थे। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट से सामने आई है। इन शिकायतों के मुख्य खुदरा व्यापार यानी रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हैं। लुविना सूफी, रजनी बिकर।
5: अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर 22 प्रारंभिक जांच और 6 जांच की गई। इसके अलावा पर्यटन, शिक्षा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि उद्योग, ऊर्जा, मैन्युफैक्चर उद्योग और प्रॉपर्टी संबंधित। साथ ही इलाकाई स्तर पर कंपटीशन कमीशन को कई विलय दस्तावेजों में कमिसा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ बुलेटिन में स्वान सिक्योरिटीज लिमिटेड और कैपिटल मार्केट्स ब्रोकर्स लिमिटेड के बीच मर्जर पर भी स्वीकृति पर चर्चा की गई। कई सौदों का भी जिक्र वर्तमान

0: ग्राहक अगर चाहे तो एक दूसरे ब्रोकर की ओर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कोई भी टैरिफ लागू नहीं होगा बशर्ते कि कानून द्वारा लागू हो या फिर खर्च की बढ़ोतरी द्वारा जस्टिफाइड हो। अंत में समझौते में इस बात का भी प्रावधान कि मर्जर के चलते कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोएगा।
1: 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नज़दीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटली नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेषकर जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। नालियों की सफाई के लिए प्रदान फंड्स के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मंत्री अजय गणेश के अनुसार पानी की निकासी को सुगम बनाने और बाढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए नालियों का नियमित रखरखाव और नदियों की सफाई आवश्यक है। आज अनंत व्रत है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और पूजा के बाद हाथ में 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र भगवान अनंत से जुड़ा प्रतीक है। अधिक जानकारी रजनी बिकर के साथ।

अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन अनंत सूत्र भी बांधने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं और सुख ऐश्वर्य के संयोग बनते हैं।

इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और विधिवत व्रत रखने का विधान होता है। महिला और पुरुष दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं। ये पर्व जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अनंत असीम अंतहीन रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजन करने तथा बाह पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धागा बांधने का विशेष महत्व है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। ये व्रत भगवान विष्णु की अनंत शक्ति कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बाह पर बांधा जाने वाला 14 गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों स्वर्ग पाताल आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जो साधक को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है।

और विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में एक झील पर एक नाव के पलटे जाने से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और 49 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। शेष यात्रियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी था। अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्ती इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। Your news on NBC Play.

शोक समाचार सुनिए। धनपत लेन बुआशेरी में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुदेवी लकिया, पैदाइशी नाम बिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे कुणाल लकिया के घर धनपत लेन बुआशेरी से उठाकर बुआशेरी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। Avenue des Colombes, Médine Camp de Masque में 62 साल की 62 years old की श्रीमती गायत्री जून की, पैदाइशी नाम द्वारका और जो गायत्री नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री दनंद जून की के घर Avenue des Colombes, Médine Camp de Masque से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। बासें रोड कैट्रोबोन में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री अश्विन नक्चेदी, जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर बासें रोड कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आपादुलीन बासें कैट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तुलसामा बापामा, पैदाइशी नाम बसवाना और जो उमा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके घर आपादुलेन बासें कैट्रोबोन से उठाकर त्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30। Le Grand Branch Road, Grand Bois में 63 साल के 63 years old के श्री अनंत कुमार गजाधर, जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घर Le Grand Branch Road, Grand Bois से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। डेनंग्लास रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दिनमतिया सितोहल, पैदाइशी नाम बिहारी और जो चंदो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर डेनंग्लास रोड गुडलैंड्स से उठाकर बुआगोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। महात्मा गांधी गली पुत्र दो हामलेट में विलेज हॉल के पास 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रतिमा रामासामी, पैदाइशी नाम गुंदोरी और जो आपा प्रात नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे शायलेन रामासामी के घर महात्मा गांधी गली पुत्र दो हामलेट से उठाकर बेलमों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मोसेलमो पिरन तेरूज में 41 साल के 41 ईयर्स ओल्ड के श्री विशेष जतन, जो गौसों लुरुआ नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी मां श्रीमती माला जतन के घर मोसेलमो पिरन तेरूज से उठाकर बुआमौशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड पिचिराफ्रे में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकवारिया कांता कुमारी खुबिया, जो रंभा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे साइलेश खुबिया के घर डिस्पेंसरी रोड पिचिराफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिचिराफ्रे की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। वाल्टो रोड अलोंग माउंटेन में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद रामरतन, जो क्रेशन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। कूटो लेन प्लेनमानियो में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पर्वती लीलमन, जो देवंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे महेंद्र कपूर लीलमंद के घर कूटो लेन प्लेनमानियों से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

स्पोर्ट्स न्यूज सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जर्मनी के नए बॉस यर्गन क्लॉप की एंट्री पार्टी को फीका कर दिया कोडी गाक्पो ने। मैच ड्रो गया 1-1। वहीं पर नए बॉस ज़ावी एर्नांडेज़ के लिए पहला मैच पहला अंक फर्स्ट हाफ में एनमेचा का गोल। इससे पहले काई हावर्ट्स को इंजुरी के कारण निकालना पड़ा। वही समस्या संडरलैंड के डच स्ट्राइकर ब्रायन ब्रॉबरी को लेकर, उसके लिए हैमस्ट्रिंग इंजुरी। इंजुरी टाइम में कोडी गाक्पो के वोले पर नेदरलैंड्स ने इक्वलाइज किया। ग्रुप ए फोर में नॉर्वे ने डेनमार्क को 3-2 से हराया। अर्लिंग अलोन का डबल, उसको बॉब का एक गोल। डेनमार्क के लिए मिकेल डाम्सगार्ड और रश्मुस होयलैंड गोल स्कोरर रहे। ग्रुप ए टू में सर्बिया 1-2। ग्रुप ए फोर में पोर्टुगल ने 1-0 से वेल्स को हराया। योआओ फेलिक्स का गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कई अच्छे मौके मिले पर नेट नहीं हिला पाया। ग्रुप बी थ्री में ऑस्ट्रिया 3-1, कोसोवो 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 0। ग्रुप डी टू में लिएस्टेनस्टाइन 0, लिथुआनिया 2। ग्रुप डी वन में अंडोरा 1-2। आज ग्रुप ए वन में इटली का मुकाबला बेल्जियम से, टर्की खेलेगा फ्रांस के खिलाफ। ग्रुप बी टू में जॉर्जिया नॉर्दर्न आयरलैंड हंगेरी यूक्रेन। ग्रुप बी फोर में पोलैंड बोस्निया हर्जेगोविना स्वीडन रोमानिया और ग्रुप सी टू में मोंटेनेग्रो साइप्रस। सब कुछ ये कल कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले गए। जापान 3-1, दक्षिण कोरिया 3-0, चीन 3-0, उज्बेकिस्तान 3-1। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर्स भी कल खेले गए। ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट ने 2-0 से गाना को हराया। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 2-इक्वाटोरियल गिनिया 0, सियरा लियोन 2-जिम्बाब्वे 3। ग्रुप एफ में मोरिटानिया 3-सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 1। ग्रुप जी में नमीबिया 1-कोंगो 0, कमरून 3-कोमोरो 1। ग्रुप एच में लीबिया 2-बोत्सवाना 2, चुनीजिया 1-युगांडा 1। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ब्राजील से होगा और इंडिया वर्सेस पनामा। क्रिकेट, इंडिया की 2 टीमें 1 T20 टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार को खेलेगी, तो वन डे टीम खेलेगी परसों संडे को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की टीम अभी भारतीय दौरे पर हैं। ब्राज़ील की बात हुई तो फुटबॉल में ब्राज़ील लेजेंड्स और इंडिया ऑल स्टार्स के बीच कल एक फ्रेंडली मैच खेला गया। 4-3 से ब्राज़ील लेजेंड्स की जीत हुई। रोनाल्डिनो का एक गोल, फर्नांडिनो का हैट्रिक रहा। मॉरिशस की अंडर 23 फुटबॉल टीम आज हरारे जा रही है। कान अंडर 23 का मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ। बीच सॉकर आखिरकार फाइनली मैच खेला जाएगा। मॉरिशस अंगोला वाला मैच आज 3 बजे ब्लू बे अरेना में खेला जाएगा। रिटर्न लेग वाला मैच भी मॉरिशस में ही खेला जाएगा इस संडे 27 सितंबर को। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से। शुभ दिन।

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, समय सुबह के 7:05 हो चुके हैं। सुबह गणेश राणा कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहते हैं कि कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। इसीलिए तो हम चले आते हैं साथ निभाने के लिए सुबह का नजराना कार्यक्रम में आपके साथ, कुछ पुराने गीत और कुछ नए, और आप सभी से मुलाकात भी हो जाती है इन गीतों के माध्यम से। तो आशा है आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। सकारात्मक सोच के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। चलिए इसी के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मूर्ख द्वारा उपार्जित समस्त ज्ञान उसके लिए अनर्थकारी होता है। वह उसके शुभ गुणों को नष्ट करता है और उसके मस्तिष्क की चेतना का भी नाश करता है।

सुबह का नजराना कार्यक्रम में अभी 7:12 हो चुके हैं और कुछ पुराने दौर के गीत आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। साथ दे रही हैं लीला जी पौशेरी से और माला सुमारू जी हैं, देवी जी हैं हाईलैंड से और सजादा जी हैं त्रियोले से। इंदिरा लोटन जी हैं उनके पूरे परिवार के साथ साथ निभा रही हैं। तो चलिए आप सभी के नाम एक ऐसा गीत जो जिंदगी को एक अलग नजरिए से ही दिखाता है। मुकेश जी की आवाज में राज कपूर साहब के का अंदाज और फिल्म है मेरा नाम जोकर, कहता है जो

कर सिर्फ एक गाना ही नहीं, ये जैसे जिंदगी से एक सवाल है, हम जो दुनिया को दिखाते हैं क्या वही हमारी पूरी कहानी होती है? जोकर सबको हंसाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपनी कहानी में कभी आंसू नहीं आए, और शायद हम सब भी थोड़े से जोकर ही हैं। इस गीत से हम हमारी जिंदगी बहुत मिलती जुलती है। घर में टेंशन हो फिर भी स्माइल, काम में प्रेशर हो फिर भी आई एम फाइन, दिल में सवाल हो फिर भी दूसरों से कहते हैं सब ठीक है। लेकिन जिंदगी का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं, जिंदगी का मतलब है अपने दर्द से सीखना, अपनी गलतियों से बढ़ना और फिर भी दिल में एक उम्मीद बचाए रखना। और इसी के साथ सकारात्मक सोच के साथ अगर आप काम की ओर बढ़ रहे हैं तो आप सभी को कहेंगे बॉन कुराज। यूं ही अच्छे सोचों के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप चलते जाएं, चाहे जो भी हो, हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है।

0: झलकियां
1: झलकियां तो चलिए श्रोताओं, आप नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 7:30 बजे आप चंद पॉपुलर गीत आप सुन पाएंगे। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता। और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी जी की प्रस्तुति में और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार आप सुन पाएंगे समाचारों के उस पार राज की चर्चा कार्यक्रम। और 10 बजे फिर से समाचार होंगे समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम लेकर आएगी रोशनी। 11 बजे फिर से समाचार होंगे समाचारों के उस पार शम्मे फरोजा उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से। और आप दिन के 1 बजे तमिल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आरसी द्वारा। और 1:45 में आप रंगारंग कार्यक्रम सुन पाएंगे रत्ना द्वारा गुजराती भाषा में। और 2 बजे आप चाइनीज़ कार्यक्रम सुन पाएंगे। चाइनीज़ कार्यक्रम के बाद आप आपकी पसंद कार्यक्रम सुन पाएंगे। 2:30 बजे रोशनी लेकर आएगी इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में आप अपने पसंद के गीत की फरमाइश कर सकते हैं 4028085 पर। सुपहर के 3 बजे समाचार आप सुन पाएंगे समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। और सुपहर के 3:45 से लेकर 4:40 पर उर्दू कार्यक्रम अनवर की तरफ से आप सुन पाएंगे गीत गज़ल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी सुमता। और शाम के 5 बजे इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे समाचार पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे शाम के 6 बजे। और 6 बजे के बाद 6:20 के पर आप सुन पाएंगे चरण फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर 6:30 बजे चाइनीज़ कार्यक्रम जिन के तरफ से। और रात के सात बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कृतिका द्वारा रात के 7:30 बजे। और 7:50 पर मराठी भाषा में गीत गंगा कार्यक्रम बापू के द्वारा। और 8:10 पर भक्ति कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रोशनी। और 8:40 पर महफिल शब परवेजा की तरफ से। रात के 9 बजे आप भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुन पाएंगे सुरेखा द्वारा। और 11 बजे कुछ पुराने दौर के गीत प्रस्तुत करेगी गिनेशा सुनहरे पल। और 12 बजे से लेकर 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम।
0: रेडियो मॉरिशस
1: झलकियां। भाई कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है हम नहीं जानते, बस हम चलते ही रहते हैं। आगे क्या होगा पीछे क्या होगा हम नहीं जानते।

बस अपने कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत कीजिए। जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। बस आप अच्छे विचारों के साथ, सबके साथ अच्छे मन कर रहे हैं और जिंदगी की गाड़ी बस चलती ही रहेगी। चलिए, फिल्म है वक्त और आशा भोसले जी की आवाज़ में आइए सुनते हैं आगे भी जाने ना तो।

0: MBC Radio 24 hours a day. श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से फ्लोगयाल के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर फ्लैट कोलोफान, फ्लैट सेनातो, फ्लैट मागा, फ्लैट जॉनसन कोट, फ्लैट फ्लोगयाल गार्डन, तिवानो एवेन्यू, क्वीन मारिसन, आर्थर डे बेसी एवेन्यू, एडवर्ड रुलियो एवेन्यू, मोबी एवेन्यू और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 26 सितंबर 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है फ्लोगयाल के निवासियों को खास तौर पर इन गलियों में किंग रोज एवेन्यू, मोंगोसा और सैस्केटबेला और क्वीन मारी एवेन्यू, जॉन केनेडी एवेन्यू, रोजर्स पेजानी और लाला लेन के कुछ हिस्सों में लुशियन डे साजाल और डेनिस सेंट आरेल और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 26 सितंबर 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है सुलियाक और मोसलमोंग के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 27 सितंबर 2026 को 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
1: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस।

कभी कभी जिंदगी में भीड़ बहुत होती है, लोग बहुत होते हैं, आवाज बहुत होती है, लेकिन फिर भी दिल की किसी कोने में एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। और तब मैं और मेरी तन्हाई, तन्हाई भी अजीब दोस्त है ना। जब दुनिया सवाल करती है तो वो चुप रहती हैं, जब दुनिया जज करती है वो बस सुनती हैं, और जब हम खुद से भागने लगते हैं तो वही तन्हाई हमें अपने सामने लाकर खड़ा कर देती है। कभी कभी तन्हाई सजा नहीं होती, वो जिंदगी का वो हमारा वो कमरा होती है जहाँ हम पहली बार खुद से मिलते हैं। कभी कभी मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कल। कल कितना छोटा सा लफ्ज़ है ना, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इसी एक लफ्ज़ में छुपा चुप जाता है। कल करेंगे, कल मिलेंगे, कल बोलेंगे, कल वक्त निकालेंगे, और फिर एक दिन हमें एहसास होता है शायद कल सिर्फ कैलेंडर पर आता है, ज़िंदगी में नहीं। इसीलिए आज की सुबह को बस एक और सुबह मत समझिए। किसी अपने को फ़ोन करना है तो आज ही कीजिए। किसी पुरानी बात को लेकर ख़ुद को माफ़ करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमें अगला पल मिलने की गारंटी नहीं होती, लेकिन जो पल अभी हाथ में है उसे खूबसूरत बनाने का मौका ज़रूर होता है। साथ निभा रही है आशा जानू जी, उनके पूरे परिवार अनवरदा की शुभकामनाएं दे रही है मामा कुमारी आपको भी, और नेफ्यूज़ हैं शुभम, रिशा, बदीदी, आरती, जीजू, राज, सभी जानू परिवार के नाम। और अभी साथ निभा रही है अमन जी एक ख्वाहियों से, गायत्री जी हैं, नोवेल फ्रांस से शांति सुकारी जी हैं, नीता खेदनी जी हैं, और साथ में हैं चित्रा जी मौदालबिया से, फातिमा जी हैं न्यू ग्रोव से, उनकी नेफ्यू का जन्मदिन है और उनके नाम ये प्यारा सा गीत। अनीता जी हैं मौदालबिया से, और इंदिरा लोटन जी हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। शोभा जी हैं वाकवा से, आफिज जी हैं लाविनिया से, और साथ दे रही हैं काजल जी हाईलैंड से, और उनकी बहन दिली चिंतामणि और चिंतामणि परिवार, और बड़े प्यार से साथ निभा रहे हैं केशव बिलक, और उनके नाम ये प्यारा सा गीत।

और उनके पूरे टीम के लिए। तो चलिए, जो करना है आज ही कर लीजिए, कल का क्या पता, कल हो ना हो।

कहते हैं आप लोग हैं तो तभी तो हम हैं। चले आते हैं साथ निभाने के लिए बड़े प्यार से, और सुबह के 6 बजे से ही आप लोग जुड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समीर जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं जो सजिया मिलके हैं, और शैला जी हैं कौन हो गया सुदे से साथ निभा रही हैं, आपका स्वागत है शैला जी। अंगिरा दुबलाल जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार कुछ दिमागी कसरत हो जाए, क्यों नहीं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। तब तक के लिए तो शायर है मैं तेरी शायरी, अलका जी के आवाज़ में सुनते हैं साजन फिल्म से। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं, आप सभी को शुभ दिन।

एक्चुअली कुछ नाम भी जुड़ते हैं इसमें, और इस गीत खास तौर पर वीणा जी और वीणा रामफल जी त्यागपुर से सुन रही है हमें, और श्यामा रघुनंदन जी भी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में है नवीन लक्ष्मण जी और उनकी प्यारी पत्नी। आरती जी हैं त्रियोले से, और उनके तीन बच्चों के नाम

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 पर चल पा। नमस्ते, आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। ब्रिटिश समझौता पर ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम स्पष्ट कर लन कि शागस परी मॉरिशस के संप्रभुता से कोनो समझौता नहीं करल जा सकी। उ घोषणा कर लन कि उ जल्द ही लंदन में ब्रिटिश NSA जोनाथन पावल से मुलाकात करियन। जून 2026 ले कंपटीशन कमीशन के वित्तीय बरिस 2025-2026 खातिर अर्थव्यवस्था के कयन क्षेत्र से कुल 133 शिकायत और समस्या प्राप्त होल बा। सरकारी काम करवा लोग के कोनो भी बाहरी वैतनिक गतिविधि खातिर पूर्व अनुमति ले के पड़ी। ई चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 के टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक आगे आल बा। आज अनंत व्रत बाटे। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के आराधना और सुख समृद्धि खातिर कल जाय होला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखल जाला। पूजा में अनंत सूत्र बांधल जाला जिमें सामान्यतः 14 गांठ होवेला। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प के प्रतीक मानल जाला। आर दूसर देश के खबर में कोंगो में गो झील पड़ी नाव पलटी से दो कोरी एक जना के मौत हो गल बा और दो कोरी नौ के बचा लेवल गल बा जबकि लापता यात्री की तलाश जारी बाटी। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते। आवाजा मरनी की खबर सुन जा। रॉय रोड ब्रह्मस्थान में चारकोरी बरिस के 80 के श्री देवदत्त बुजुनत जे दत्त नाम से जस्ती जानत जाथरलन जा आर जे आगे पुलिस को पड़ल रहलन उ गुजरगल होवन। उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर घरे रॉय रोड ब्रह्मस्थान से उठा के लावों चुह के शमशान भूमि ले चावल जाए। दनपत लेन बुआशेरी में 3 गोरी बरिस के 60 के श्रीमती सुदेवी लखिया पैदाइशी नाम भिकारी आर जे सुदेवी नाम से जस्ती जानत जाथरलंजा उगुजर कल हवन। उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर बेटा कुनाल लखिया के घरे धनपत लेन बुआशेरी से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले जावा जाए। एवेन्यू दे कोलोम्ब में जिन कौ मास्क में 3 गोरी 2 बरिस के 62 के श्रीमती गायत्री जून की पैदाइशी नाम द्वारका आर जे गायत्री नाम से जस्ती जानते जाथरलंजा उगुजर कल हवन। उकर माटी आज दिन के 1 बजे उकर पति श्री दानंद जून की के घरे एवेन्यू दे कोलोम्ब में जिन कौमास से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले जाव जाए। बासन रोड काट्रोबोन में 2 गोरी 4 बरिस के काहन का थौ के श्री अश्विन नक्चेदी जे अश्विन नाम से जस्ती जानते जाथरलंजा उगुजर कल हवन। उकर माटी आज दिन के 1 बजे उकर घरे बासन रोड काट्रोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले चावल जाए। अपादू लेन बासें काट्रोबोन में 4 गोरी 7 बरिस के 87 के श्रीमती तुलसामा बापामा पैदाइशी नाम बसवाना आर जे उमा नाम से जस्ती जानते जाथरलंजा उगुजर कल हवन। उकर माटी आज सांझ के 4:15 उकर घरे अपादू लेन बासें काट्रोबोन से उठा के थामा मेल के शमशान भूमि ले चावल जाए। लुग्रॉ ब्रांच रोड गांव बुआ में 3 गोरी 3 बरी

0: इसके 63 अंकी श्री आनंद कुमार गजाधर जे राजेश नाम से जस्ट जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के एक बजे उकर पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घरे लो खौ ब्रांच रोड खौ बासे उठा के माघिशानी रोज बेल के शमशान भूमि रे चावल जाए देनांगलास रोड गुडलैंड में चार कोरी सात बरिस के कथोवें से तौके श्री मती दिन मतिया सितोहल पैदाइशी नाम बिहारी आज चंदू नाम से जस्ते जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन की 2 बजे उकर घरे देनांगलास रोड गुडलैंड से उठा के बुआगुश गुडलैंड के शमशान भूमि रे चावल जाए महात्मा गांधी गली पुत्र दो हमलेट में 3 कोरी 11 बरिस के 67 अंके श्रीमती प्रतिमा रामास्वामी पैदाइशी नाम गुंदोरी आज आपा प्रात नाम से जस्ती जनत जात्र लंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर बेटा शायलेन रामास्वामी के घरे महात्मा गांधी गली पुत्र दो हमलेट से उठा के बेलमों के शमशान भूमि ले चावल जाए मोसेल मोपीरन ते रूज में 2 कोरी 1 बरिस के 41 अंके श्री विशेष जतन जेगा सों लो रोआ नाम से जस्ते जानते जात्र लंजा उगुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकरमा श्रीमती माला जतन के घरे मोसेल मोपीरन ते रूज से उठा के बुआ मौशों के शमशान भूमि ले चावल जाए डिस्पेंसरी रोड पिची राफे में 3 कोरी 16 बरिस के 76 अंके श्रीमती सुखवारिया कांता कुमारी खुबिया जे रंभा नाम से जस्ते जानते जात्र लंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा ओकर बेटा सालेश खुबिया के घरे डिस्पेंसरी रोड पिची राफे से उठा के मोमास्काल पिची राफे के शमशान भूमि ले चावल जाए वाल्टोन रोड लॉन्ग माउंटेन में 3 कोरी 12 बरिस के 72 अंके श्री विद्यानंद रामरतन जे कृष्ण नाम से जस्ते जानते जात्र लंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी बाद में उठावल जाए कूटो लेन प्लेनमानियों में 4 कोरी 12 बरिस के 92 अंके श्रीमती पर्वती लीलमन जी देवंती नाम से जस्ते जानते जात्र लंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन की 2 बज के आधा ओकर बेटा महेंद्र कपूर लीलमन के घरे कूटो लेन प्लेनमानियों से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले चावल जाए शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हम निसंवेदना प्रकट करते हैं जा
1: ये है रेडियो मॉरिशस

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 4285 पर, नहीं तो 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग्य हैं। ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग्य हैं, जो हम खा नहीं सकते। ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग्य हैं। 4028085 पर 4285 पर।

जी हाँ श्रोताओं, ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग है। 4028085 पर फिर से मैं प्रश्न दोहराती हूँ, ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग है।

0: तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
1: मैं उमा हूँ, रुसबेल से।
0: उमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप भाग ले रही हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि ऐसे चार प्रकार के खाना बताइए जो न खाने योग हैं, न खाने योग हैं। तो चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब है।
1: हाँ देती हूँ, तो जवाब है पागल खाना,
0: ओके,
1: डाखाना, कारखाना
0: जी,
1: और जिम खाना।
0: क्या बात है भाई,
1: धन्यवाद।
0: आपको बधाई हो उमा जी,
1: बहुत धन्यवाद।
0: और आपको शुभ दिन कहेंगे भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपको भी शुभ दिन।
0: अच्छा जी, शुभ दिन, बाय बाय। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं।
2: रहने तो छोड़ो ये कहानियां,
0: छोड़ना नहीं है अभी, पकड़ना है। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तीन देश के नाम बताइए जिसमें रिया है, तीन देश के नाम बताइए जिनमें रिया है, रिया। तीन देश का नाम बताइए जिनमें रिया है। 402-808-5 पर चलिए हमें बताइए कि तीन देशों का नाम बताइए जिनमें रिया है।

0: सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मैं भी इतने प्यार से इतने खुश हो गई। कितने लोग साथ नभा रहे हैं, चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है और उनके पास क्या जवाब। हेलो
1: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं हमारी अन्नपूर्णा देवी?
0: मैं ठीक हूँ और आपको मैं सुबह से देख रही हूँ मैसेज, और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी।
1: हाँ कोई बात नहीं।
0: और आपके पास क्या जवाब है?
1: मेरे पास चार जवाब हैं।
0: चलिए बताइए, मैंने तीन बताया, आपके पास चार हैं, चलिए बताइए।
1: कोरिया
0: कोरिया ओके,
1: नाइजीरिया
0: ओके,
1: ऑस्ट्रेलिया
0: ओके,
1: अल्जीरिया।
0: भाई मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि ये सही जवाब है।
1: शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी कमला जी, और सही जवाब देने के लिए धन्यवाद और बधाई हो। इतनी कसरतों के पास के बाद भी इतने अच्छे अच्छे जवाब आते हैं, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाने के लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायक हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग इतने प्यार से साथ निभाते हैं। तो एक और प्रश्न आप सभी के नाम। अदालत अपराधी को सजा काटने के लिए कहाँ भेजती है? अदालत अपराधी को सजा काटने के लिए कहाँ भेजती है? अदालत अपराधी को सजा काटने के लिए कहाँ भेजती है? 4028085 पर, 402-80-85 पर। चलिए मैसेज भेजिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 4028085 पर। एक श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: दिल से प्यार भरा नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी लवली सी पूजा जी, कैसे हो जी?
0: मैं ठीक हूँ जी। गीता जी आपका स्वागत है।
2: जवाब देती हूँ, जेल खाना।
0: जेल खाना, और आपने सही जवाब दिया है, और आपको बधाई कहती हूँ गीता जी, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी। बाय बाय।

चलिए बताइए, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार जो भारत ने दुनिया को दिया है वह क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार जो भारत ने दुनिया को दिया है वह क्या है? 4028085 पर आप सभी का इंतजार है। सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार जो भारत ने दुनिया को दिया है, सही जवाब मिला है मुझे 5251700 पर। तो मैं तो फोन का इंतजार करती हूँ। चलिए बताइए, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार जो भारत ने दुनिया को दिया है वह क्या है? 4028085 पर आप फोन कीजिए।

0: कमला जी मेरा नाम है और फिर से आ गई, आपका फिर से स्वागत है कमला जी।
1: लेकिन मैं छैया नहीं हूँ, मैं राज कपूर हूँ, मैं तो कमला हूँ।

0: जी,
1: बोलिए पूजा जी।
0: आपका
1: हाँ
0: फिर से स्वागत है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार जो भारत ने दुनिया को दिया है वह क्या है?
1: हाँ आपको भी हमारे दिलों दिलों में स्वागत है, प्यारी
0: धन्यवाद
1: प्यारी प्रोग्राम लाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हाँ, और सर चकरा रहा है जवाब ढूंढते ढूंढते। मेरे ख्याल से योगा।
0: ख्याल से निकाल कर ला गई आपने, और ये सही जवाब है, और वो है योग।
1: हाँ, और आरोही की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अभी वो स्कूल गई है
0: मेरे
1: अभी।
0: लिए भी
1: हाँ
0: आरोही बहुत प्यारी है, हमेशा मैं उसका
1: अभी
0: नाम
1: तो
0: लेती
1: ओरल
0: रहती
1: एग्जाम
0: हूँ।
1: चल रही है, अभी ओरल एग्जाम चल रही है, अभी वो थोड़ा हाँ बिजी
0: तो
1: बिजी
0: उनको
1: है।
0: ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे वो अपने सारे एग्जाम्स में पास हो जाए और यूं ही
1: धन्यवाद।
0: आपके नाम को रोशन करती रहे।
1: हाँ क्यों नहीं, धन्यवाद। शुभ दिन। बाय
0: शुभ दिन आपको भी कमला
1: बाय
0: जी, बाय।
1: बाय।
0: मैं
1: तो
0: हूँ
1: चलिए
0: श्रोताओं, इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और पहला जो योग योगा का जो है सही जवाब दिया है वो है माला जी, और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से सही जवाब दिया है। और साथ में है शिमला जी, थ्रियोले से हैं, और उनको भी बधाई कहेंगे। और जिन जिन लोगों ने फ़ोन द्वारा हमें फ़ोन किया है और इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और प्रश्न तैयार करने के लिए नवीन लक्ष्मण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
2: गर्मा गर्म नाश्ता,
0: साथ रहिए। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे, और 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर,
4: नमस्ते। हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने देखब जा कि हमने के ई विश्व में कल्चरल हेरिटेज पॉलिसी मतलब सांस्कृतिक विरासत के जो नीति बा ओके कैसे निर्धारित करा गल और कहाँ तक ई लागू होता, खासकर दुनिया भर के गरीब देश के ग्रामीण इलाका में, मतलब कि सबसे गरीब देश के सबसे गरीब इलाका में। बहुत देश में अनौपचारिक नीति अनकन्वेंशनल पॉलिसी साल 2000 से अमल में आनल गलबा, और इमें यूरोप के ग्रीस से लेके बांग्लादेश भी शामिल बा। चाहे ई नीति अनौपचारिक तरीका से ही सही, लेकिन अपनावल गलबा, काहे कि समाज के ई विरासतीय पहलू से आर्थिक लाभ प्राप्त करे के जरूरत महसूस होई लगल बा। और 2008 में जोन आर्थिक तनाव इकोनॉमिक क्राइसिस जोन महंगाई रिसेशन चलल, और फिर एकर बाद जब कोविड-19 आल, त एकर से इस जरूरत और भी मजबूत हो गल। और जोन मुख्य वजह देवल गल उ रहल कल्चरल टूरिज्म सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ावा देवे के। ई जोन शब्द बा खाली ई युग में विकास, ई जोन शब्द बा कल्चरल टूरिज्म उ खाली ई युग में अपन महत्व के विश्वास नहीं दिलैलक, बल्कि एगो नवा बदलाव भी अनले बा धरोहर के दुनिया में, जहाँ सांस्कृतिक विरासत अब खाली सबके धरोहर और पहचान ही नहीं रह गल बा, बल्कि एगो आर्थिक वस्तु एगो इकोनॉमिक कमोडिटी भी बन गल बा। ई एगो साधन बन गल बा पर्यटक लोग के आकर्षित करके एगो ठोस छवि के साथ आगे बढ़े के, जहाँ एगो राष्ट्र सकी अपन मूर्त और अमूर्त विरासत के प्रस्तुत करे। ई खातिर नीति भी अपनावल गल और पुराना कानून के आधार पर बनावल गल, जैसे आर्कियोलॉजी जैसन साइंस के नियम कानून और एक्ट के अनुसार भले ही इकोनॉमिस्ट लोग माने लंजा की ई पॉलिसी

0: ज़्यादा अहमियत नई देवलगढ़ बा, कहे कि ई उतना कुशल नहीं बा और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य खर्च लगेला ई में, और ई पॉलिसी के बेहतर करे के ज़्यादा इंसेंटिव भी नहीं बा। लेकिन ई सब नीति के महत्व तब समझ में आवेला जब जनसाधारण के एगो धरोहर और ओकर सलामती पर खतरा मंडराए लगेला, और तब एगो ऐसन समाधान के ज़रूरत पड़ेला तुरंत ही जेके सकबा अपनावे। और ई दिशा में सकब्जा बोले कि ग्रीस जैसन देश के सांस्कृतिक नीति बांग्लादेश जैसन देश से बेहतर बा, फिर भी बांग्लादेश जोन की अपन सांस्कृतिक धरोहर खातिर मशहूर त नहीं है, लेकिन ओकर चार गो हेरिटेज साइट बा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होल। जबकि ग्रीस जैसन देश अपन समृद्ध आर्कियोलॉजी और सांस्कृतिक विकास खातिर मशहूर हवन सा और अपन कानूनी ढांचा खातिर भी, लेकिन उन्हें सकल बा अपन देश में उतना अंकन करावे जितना कि बांग्लादेश। अब मॉरिशस के उदाहरण ले जा, ये एगो छोटा देश होते हुए भी अपन धरोहर के संरक्षण में जी जान से संलग्न बा। हमनी हियाँ कला और संस्कृति मंत्रालय बा, ई लोग के तहत नेशनल हेरिटेज फंड बा, और कितने ऐसन विरासत संस्था बा जे लोग के अपन एगो एक्ट बा, कानून बा, और जे लोग बहुत ही लगाव के साथ, बहुत ही डिटर्मिनेशन कटिबद्धता के साथ विरासत के संरक्षण में काम करेलन सा, और इस सब विरासत के जनता तक प्रस्तुत करे में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी बहुत हद तक कार्यरत बा, और ये मॉरिशस खातिर एगो गर्व की बात है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर पी।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार विधिमा।
2: नमस्कार विदिता, सभी को नमस्कार। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन के को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इससे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों की एक लहर में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके बलों ने अफगानिस्तान में 10 ठिकानों पर हमला किया और ये भी जोड़ा कि ये हमले पूरी तरह से चिन्हित सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: on NBC Play.

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो श्रोताओं, आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम कानून से जुड़े जो मामले हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच हैं डॉक्टर नीतू जैन। जी हाँ, डॉक्टर नीतू जैन, आप एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य और हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में, यानी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको लेकर अभी जो हमें समस्या चल रही है, जो टेंशन चल रही है कि उनका स्वास्थ्य आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। और आजकल की जो पीढ़ियां, अभी आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में हमारे जो दादा परदादा थे 100-100 साल तक जीते थे, एकदम स्वस्थ रहते थे, और अभी आप देखेंगे कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं, बेहोश गिर रहे हैं, मोटापा आ रहा है, डायबिटीज़ तो जैसे हर किसी को 35-50 के बाद बहुत ना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जानेंगे और इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम डॉक्टर नीतू जैन के साथ। डॉक्टर नीतू जैन, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद वेदिता जी।
0: तो आज जैसे हमने कहा कि हमारा जो कार्यक्रम है इस पे हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अभी जो पीढ़ी कौन सी समस्याओं से जूझ रही है इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जब हम नॉर्मली बात करते हैं डॉक्टर्स की, आप डॉक्टर हैं, हम जब डॉक्टर की बात करते हैं, जब कोई बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल जाता है, क्लिनिक जाता है, इंजेक्शन लगाता है, ड्रिप लगाता है और दवाई खाता है। आपके पास इसका अलग सॉल्यूशन है जहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक करता है, उसका काम होता है कि आपको ऐसी दवाइयाँ दे जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आप एक फाउंडर भी हैं पियास की, और इसका आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले।
1: हाँ, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अलाइड साइंसेस का एम है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं छोटी छोटी टिप्स से। जैसे आज आप हम सबको पता है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबको पूछे तो बोले टाइम नहीं है करके, तो उसके लिए हम क्या करना, तो हमने इजहार किया है।

0: छोटी छोटी चीजें, जैसे एक मिनट के लिए योगा आपको नहीं
1: टाइम मिलता, एक मिनट के लिए योगा,
0: अगर जैसे मानिए आपको पूरा एट ए स्ट्रेच आपको टाइम नहीं मिलता 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो आप वन मिनट की प्रैक्टिसेस इन बिटवीन मिडस्ट ऑफ लाइफ आप कर सकते हैं, मिडस्ट ऑफ लाइफ आपके लाइफ के बीच में, जैसे आप काम कर रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं या आप ऑफिस में सोफे पे बैठे हैं, तो आप उठ के कुछ ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिसके कि एक मिनट में आपने 59 मिनट्स अपना काम किया और एक मिनट के लिए एक प्रैक्टिस की, तो जिससे कि आपको तुरंत हेल्प हो सकती है और आपके अगले 59 मिनट्स बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं। तो डूइंग एंड पॉज इन बिटवीन मिडस्ट ऑफ लाइफ, काम के मध्यांतर दौरान उसी वक्त आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस सीख के हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्ट्रेस 59 मिनट्स में जो आपने स्ट्रेस गेन किया है
1: जी,
0: वो तुरंत आप एक मिनट की प्रैक्टिस करके आप तुरंत उसको ख़त्म कर सकते हैं।
1: ओ, ये तो
0: ऐसी टाइप की प्रैक्टिसेस हमने बहुत इजहार की है और उन प्रैक्टिसेस को हम कराते हैं
1: जी, जी,
0: तो हमने 40 ईयर्स से हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हम एक घंटे की जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको कोई दिन सेट नहीं हुआ 30 मिनट्स 20 मिनट्स, तो आप वो प्रैक्टिस मिडस्ट ऑफ डे कि डे के दौरान आपने अपना काम किया 59 मिनट्स और आपने एक मिनट की कोई प्रैक्टिस की। जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्माइल बहुत अच्छी है, तो अगर आपको लगता है कि ऑफिस में आप दूसरी कोई प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और बड़ी वाली स्माइल,
1: ये आप मुझे बोल रहे हो कि ये जो योगा सिखाते हैं इसका हिस्सा है?
0: 101% उसका हिस्सा है। योग मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि मन को शरीर के साथ रखना। तो आप कोई भी जब क्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं और मन को सब शरीर के साथ जोड़ देते हैं, उसी को योग कहा जाता है। तो जब आपने स्माइल की तो वो आपको आनंद की तरफ लेके जाएगा,
1: डेफिनेटली,
0: राइट? तो वो एक और हमारे बॉडी की शीट है
1: जी,
0: हमारे बॉडी की एक लेयर है, परत है। तो आपका आनंदमय कोश जगने लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम बहुत सारी कराते हैं।
1: ओके, क्योंकि कोई इंसान जब काम पे गया है, उसको बहुत सारा काम है, वो स्ट्रेस में है, तो अगर हम उसको कहेंगे स्माइल करो, तो वो तो और भी गुस्सा करेगा कि मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे इतना काम है, कोई आके मुझे बोल रहा है स्माइल करो। अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया कि ये रियल मीनिंग ऑफ स्माइल क्या होता है। स्माइल करना लाइक ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप खुश हो गए तो स्माइल किया। आपके कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि इंसान अपने आप को खुश कर सकता है, यानी कि वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी, आपका सुकून आपके हाथ में है, लेकिन किसी ने ठीक तरह से कभी सिखाया नहीं कि ये कैसे होता है। आपने बोला आप काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको स्माइल करना है, हमें नहीं पता कि ये स्माइल जो है योगा के हिस्से में आता है, तो पॉज करो एक मिनट के लिए और स्माइल करो। हाँ, ये बात अलग है कि लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या हो गया, दिमाग खराब तो नहीं होगा, ये बैठ के क्या कर
0: रहे हैं। आप सही कह रहे हैं,
1: तो ये अभी आप हमें बता रही हैं, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो के साथ, टीवी के साथ, उनको पता है कि ये जो कोई देख लेगा कि कोई बैठ के स्माइल कर रहा है, वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो एक तरह से अपना योग कर रहा है, योगा कर रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है। वो क्या कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को भगा रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि ये जो स्माइल करना है, ये भी हमारे बैठ कर ऐसे स्माइल करना, यानी कि आप अपने स्ट्रेस को भगा रहे हैं।
0: जैसे आप स्माइल करते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही आप वर्तमान में आ गए तो सारे के सारे स्ट्रेस तुरंत चले जाते हैं
1: जी,
0: और आपके ब्रेन से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऐसे टाइप के हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, जो कि आपको स्माइल करने से मिलने लगते हैं।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं, आपने बहुत, जैसे हमें कहते हैं ना कि लॉटरी मिल गई, ऐसा लगता है कि आपने ये बात कह के हमें एक ऐसा बड़ा तोहफा दे दिया है जो कि हमारे पास है, लेकिन हम उसका कैसे इस्तेमाल करें हमें पता नहीं था। सो अभी जितने भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, यही कहूँगी कि आप लोग भी एक घंटे के बीच में कहीं ना कहीं एक मिनट निकालें और स्माइल कीजिए, क्योंकि स्माइल की जो वैल्यू होती है, अभी डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए, तो स्माइल तो हो गया, अब आगे।
0: हाँ, अब देखिए, हम लोग खाना खाते
1: हाँ,
0: ठीक है, खाना खाना पक्का खाना ही पड़ेगा
1: जी।
0: अब चाहे कितने भी हरी में, खाने को प्रेयर की तरह लीजिए, खाने को प्रेयर की तरह, जैसे कि आप प्रेयर में उठते हैं बीच में,
1: हाँ
0: उठ के,
1: नहीं, नहीं, उठते
0: एक बार
1: नहीं।
0: प्रेयर के लिए आप बैठ गए तो आप उठते
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: आप आंखें खोलते, इधर उधर देखते
1: नहीं,
0: नहीं,

0: कंसंट्रेट करते हैं,
1: कंसंट्रेट करते हैं प्रेयर पे। तो आप खाने पे उसी प्रकार से कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको आज की डेट में सबको पता है हेल्दी खाना क्या है, ठीक है, पर कैसे उसको खाना है वो बहुत कम लोग उसको प्रैक्टिस जीवन में करते हैं। भगवान ने 32, आप जब धरती पे बॉर्न हुए तो आप 32 टीथ
0: लेके,
1: राइट, हम 32 टूथ लेके आए हैं, राइट, तो उनका यूज हम सही ढंग से करें। तो उनको हम धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, और अगर चबाने के साथ आपने स्माइल भी जोड़ दी दोनों, तो आपका खाना, आप भूल जाएंगे वर्ड एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, और ये वर्ड्स आपके जीवन से निकल गए तो फिर कोई दूसरी बीमारी बनना शरीर में पॉसिबल नहीं है।
0: हमें तो ये पता है कि खाना ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे खाना, वैसे खाने को बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे खाना चबा के खाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक खाना गर्म है लोग उसको खाना पसंद करते हैं, और बहुत से लोगों को जल्दी होती है, वो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं घर पे, आप उनको कभी भी नहीं देखोगे कि वो आराम से बैठ के खाना खा रही हैं। वो खाना सबसे पहले परोसती हैं, फिर उसके बाद सबको देख लेती हैं, फिर बैठती हैं, जल्दी जल्दी खाती हैं क्योंकि बाकी लोग खा रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो वो खुद उठ के जाती है, और उसका ये होता है कि 5 मिनट में खाना ख़त्म कर लो क्योंकि उसको बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, बाकी लोग आराम से खा रहे हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी खाती हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएँ हैं स्पेशली, और जो लोग किचन का भार संभालते हैं, वो हो सकता है कोई जेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई लेडी ही हो, लेकिन किचन में जो खाने बनाने वाला होता है, सर्व करने वाला होता है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए।
1: इसीलिए जैसे जो खाना बनाती है तो उसको तो सबसे पहला हक है कि वो पहले खुद खाए।
0: आपको लगता है कि वो,
1: हाँ, वो पहले खुद खाए, और अगर उनको भूख नहीं लगी है तो बाद में खाना चाहे तो बाद में खाए, पर शांति से खाए। जितना टाइम उन्होंने किचन में बिताया खाना बनाने में, कम से कम उतना टाइम खाने में बिताए, तो उनको सच में मजा आएगा अगले काम करने को। और नेचुरल स्ट्रेस जब आप अच्छे से चबाते हैं तो आपका स्ट्रेस जीरो होने लगता है। अब क्योंकि हमारे पूरे दांत पूरे ब्रेन के हमारे नस नाड़ियों से कनेक्टेड है
0: जी,
1: तो वो कॉन्स्टेंटली आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं जब आप चबा रहे होते हैं। आपने देखा होगा गुस्से में बंदा क्या करता है,
0: हाँ,
1: तो उसी को चबा लो पहले खाने को ही, तो ये सब करने की जरूरत आपको
0: नहीं
1: पड़ेगी, नहीं कभी नहीं पड़ेगी, राइट। तो खाना इसलिए धीरे धीरे बहुत चबा चबा के खाना है कि जिससे कि खाना आपका डाइजेशन मुंह में होना शुरू हो जाता है, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी आराम मिलेगा, काम कम रहेगा,
0: हाँ,
1: फिर आपको जितना भागना है आप मस्ती से भाग पाएंगे।
0: क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाना खाने को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन होता है ना वो ठीक से होता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम सबको 32 दांत मिले हैं, तो चबाइए फिर खाने को अंदर डालिए ताकि हमारा जो सिस्टम है अंदर का उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
1: वहीं से आपकी लार मिक्स होती है सलाइवा, और सलाइवा इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिसिन जो कि एंटीसेप्टिक भी है और उसके साथ साथ में एल्कलाइनिक है। तो उसकी वजह से आपका खाना उसके साथ जैसे ही मिक्स होता है तो वो बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसका डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन तीनों बहुत अच्छे से होते हैं, और जब ये तीनों बहुत अच्छे से होते हैं तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलने लगता है।
0: तो यानी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको इतनी सारी दवाइयों के लोग टिप्स देते हैं, उनको दवाइयाँ बोलते हैं, जबकि आपके पास सॉल्यूशन आपके मुंह के अंदर आपका सलाइवा है, अगर उसका सही इस्तेमाल करें, धीरे धीरे खाना खाएं, तो आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि हमें नहीं पता था। इसके लिए डॉक्टर जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं इसमें,
1: क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई। ये सब प्राइमरी मेडिसिन में आता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं
0: जी,
1: तो अगर उनको हम प्रैक्टिस में कर लें तो हम अपने हार्मोन्स को, अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस में रख सकते हैं
0: जी।
1: फिर जैसे मानिए कि कोई मेडिकेशन पे है, कोई दवाइयाँ ले रहा है काफ़ी सालों से, तो उनकी दवाइयों का भी असर अच्छा आएगा, क्योंकि जब आप दवाइयाँ

0: लेते हैं और खाना ढंग से नहीं खाते तो वो दवाई भी इतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाती
1: जी।
0: जिसको भी अगर रहना है तो आपको नहीं रहना, बिना दवाई के रहना है तो उसका भी रास्ता है, आपको जैसे जीवन जीना है सारा रास्ता है। हम लोग प्यास में इंटीग्रेटिव करते हैं कि जैसे मानिए कि मॉडर्न मेडिसिन से हम आपको समझते हैं, जैसे हम डायग्नोसिस करते हैं आपका ब्लड के थ्रू, एक्सरे के थ्रू, अगर जरूरत है तो हम MRI या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत है तो वो करवाते हैं, तो जिससे कि आपकी बॉडी को, आपकी शरीर में क्या चल रहा है उसको और अच्छे से समझा जा सके, कोई भी पॉइंट हम मिस ना करें
1: जी।
0: तो जब आपका इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो जाता है मॉडर्न साइंस से, फिर हम एंशियंट विजडम से आपको सॉल्यूशन देते हैं
1: जी,
0: कि छोटे छोटे सॉल्यूशन के, जैसे मानिए आपके कहीं पे दर्द है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या तो खाने से या तो 5 एलिमेंट से, क्योंकि आपका पूरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है
1: जी,
0: मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है
1: जी,
0: तो इसलिए हमारे सारे सॉल्यूशन 5 तत्वों से आते हैं। तो इन 5 तत्वों में आपके शरीर में जो भी कमी होती है उससे रिलेटेड आपको डिजीज होती है, जैसे मानिए किसी को एसिडिटी है
1: जी,
0: तो इसका मतलब उनमें फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व बढ़ गया है।
1: तो अग्नि अगर बढ़ गया है तो क्या,
0: तो उससे उनको एसिडिटी ज्यादा हो रही है। अगर वो बैलेंस रहता है तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है,
1: तो उसका सॉल्यूशन
0: फिर हम लोग ये करते हैं कि आपके पेट पे हाइड्रोपैक्स देते हैं, मड़के पैक्स देते हैं जो कि अर्थ से आता है, मिट्टी का पैक, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं जिससे कि वो थर्मल इफेक्ट से आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है या उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है जिससे कि आप खाना ढंग से खा पाए।
1: तो ये जो पैक होता है ये तो आप अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं,
0: ऊपर रखते हैं
1: ना,
0: तो हमारी पूरी स्किन एक दूसरे के लेयर से कनेक्टेड है।
1: हाँ, यानी कि आप जब वो मड पैक लगाते हैं तो उसका असर अंदर होता है,
0: अंदर तक जाता है, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर भी अवेलेबल है स्किन के लास्ट लेयर पे। जब ही तो आपने टच किया, देखिए आप गर्म पे टच करते हैं तो कैसे आपका हाथ तुरंत
1: बाहर कर लेते हैं,
0: बाहर कर लेते ना, तो ये हुआ आपका
1: जी
0: प्रिवेंटिव डिफेंस मैकेनिज्म कि आपके हाथ अपने, आपका ब्रेन आपके बॉडी को बचा रहा है
1: जी,
0: राइट। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर का कम्युनिकेशन भी राइट खाने से, राइट ढंग के खाने से, राइट ट्रीटमेंट लेने से बढ़ता है, तो जिससे आपके बॉडी में जो हो रहा है वो धीरे धीरे इन 5 एलिमेंट्स के चिकित्सा से वो धीरे धीरे बदलाव आने लगता है।
1: तो ये तो हमने अग्नि की बात कर दी,
0: अग्नि की बात की। अब जैसे मानिए कि किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो उसमें उनका पृथ्वी तत्व और
1: अर्थ,
0: पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ गया,
1: पानी का,
0: हाँ पानी का, तो उसी से उसका ट्रीटमेंट भी होगा कि उनके जल को बैलेंस करने के लिए बॉडी में फिर से पानी दिया जाएगा, या तो गर्म या तो ठंडा या तो मिक्स के कॉम्बिनेशन में या फिर जूसेस के फॉर्म में या सूप्स के फॉर्म में, तो उससे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और उससे वो ठीक हो सकते हैं।
1: इसीलिए किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उनको काढ़ा पिलाते हैं,
0: हाँ उनको काढ़ा पिलाते हैं या हर्बल टीज पिलाते हैं या अदरक का काढ़ा पिलाते हैं या काली मिर्ची डाल के काढ़ा पिलाते हैं, गार्गलिंग करने का बोलते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है
1: जी।
0: तो उससे कि आपका कफ बाहर आने लगता है ऐसा। तो ये हो गया आपका, हम जब 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो 5 एलिमेंट्स आप सबको पता ही है, हम लोग नाम कह देते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। तो जब हम, अब जैसे आज फास्टिंग कर रहे हैं तो आपने स्पेस को बढ़ाया है अपने शरीर में, ठीक है, जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तब भी हम स्पेस बढ़ाते हैं शरीर में, जब आप स्पेस तत्व बढ़ाते हैं, आकाश तत्व बढ़ाते हैं, तो शरीर में हीलिंग होना शुरू होती है। ओके, और फिर अभी हमने पृथ्वी के बारे में बात कर ली, जल के बारे में बात कर ली, अग्नि के बारे में बात कर ली, आकाश के बारे में बात कर ली, अब एक तत्व रह गया जो कि एयर के बारे में, जो कि हम प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, जो कि कांस्टेंट आप ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उसमें भी आपका कंटिन्यूस एयर तत्व जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, वायु तत्व आपका आपके बॉडी में जा रहा है। पर जब आप वायु तत्व को ले रहे हैं तो उसको अगर आप प्रॉपरली अवेयरनेस से ले लें तो उसका असर और अलग आता है। जैसे कि आपने अवेयरनेस से स्माइल की कि लगा कि अब बहुत ज़्यादा काम हो गया, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो आंखें बंद करके आपने स्माइल किया और एक मिनट के लिए आप स्माइल करके बैठ गए, ऐसे ही

0: आप डीप ब्रीदिंग एक मिनट के लिए, जो कि आप अगले एक बार 50 मिनट्स 55 मिनट्स आपने काम किया और उसके बाद में आपने एक मिनट का गैप छोड़ा और आपने स्माइल किया
1: जी।
0: नेक्स्ट आवर में आपने 59 मिनट काम किया और उसके बाद में आपने एक मिनट का गैप छोड़ा और उसमें आपने डीप ब्रीदिंग किया
1: जी,
0: ठीक है, धीरे धीरे पेट को फुलाया और धीरे धीरे पेट को अंदर ले गए, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि किसी को नुकसान ना करे। ये इसमें आप खुद कर सकते हैं, पर हम आपको आप हमारा लिंक भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो, उसमें काफ़ी सारे मेडिटेशन है, ब्रीदिंग के लिंक्स हैं जो कि आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं
1: जी।
0: जब तक आप हमसे जुड़ते नहीं, आप आ नहीं पाते
1: जी। तो चलिए, हमने अभी पांच तत्व के बारे में भी बात कर ली, अभी हम खाने के बारे में बात करते हैं। सब कहते हैं हेल्दी खाओ, ठीक है। लोग जो है आजकल जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, पहले के ज़माने में ये सब तो होता नहीं था। और जैसे मैंने कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे जो दादा परदादा थे वो तो गन्ने के खेत में काम करते थे, रोपाई करते थे, कोई मेसन का काम कर रहा है तो लगातार उनका जो हाथ, उनकी जो बॉडी है, उनके पैर हैं, चल रहे हैं हाथ। आजकल लोग जो हैं कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उनकी बॉडी जो है ना कहीं स्टिफ हो जाती है। सब कहते हैं कि गर्दन में पेन है क्योंकि वो ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और उनका पूरा फोकस हाथ में होता है, तो पूरा ये हाथ, पूरा ये शरीर जो है। तो ऐसे में हमने तो ये बता दिया कि आप बैठ के रिलैक्स करो, लेकिन कभी कभी स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अपना कंप्यूटर छोड़ के एक मिनट के लिए बाहर जाके अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ये ज़रूरी है।
0: अब जो छोटे छोटे काम है, जैसे कोई फाइल उठा के लानी है, तो वो आप खुद करिए, चाहे आप लोगों को रखिए आपके साथ में, पर बीच में उठ के आप खुद जाके आइए। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों को ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से फिर आपको पैरों में भी दर्द नहीं होता। जब आपके पैरों में दर्द नहीं होता तो आपके बॉडी में जो हाथों में आपको दर्द है माउस की वजह से या कंप्यूटर या फोन की वजह से, हाँ, तो आप धीरे धीरे हाथों की मूवमेंट करके चलिए, तो उससे वो दर्द भी आपका चला जाएगा। और आप बैठ के धीरे धीरे कंधों को ऊपर नीचे करना है, रोटेशन करना है बहुत धीरे धीरे, पर ध्यान रख के और आंखें बंद करके। जैसे ही आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते तो उसका असर आपको जल्दी और फास्ट मिलता है।
1: हाँ, क्योंकि फोकस जाता है कंधे पे और आप रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। जब आप आंखें खोल के कर रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आंखें बंद करके कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि वो मूवमेंट स्लो हो जाता है।
0: एग्जैक्टली, तो उससे क्या होता है कि आप मूवमेंट को भी बैलेंस में करते हैं, आप गलत नहीं करते और 100% आपका रिजल्ट इंस्टेंट आपको मिल जाता है।
1: ये तो हम भी जानते हैं कि स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जब आप सुबह उठे, जैसे आप बिस्तर से उठे, आपको कुछ लोग होते हैं अलार्म लगाते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, सब कुछ उनका जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी होता है। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि इंसान जो है वो कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप चाहिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई, मैं 8 घंटे सोती नहीं हूँ। आपको लगता है कि वो 8 घंटे की जो स्लीप है जिसमें वो उठते हैं और थके होते हैं, और वो 6 घंटे या 5 घंटे का स्लीप जहाँ पे इंसान उठता है तो सुकून के साथ उठता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। आप मुझे उस फ़र्क के बारे में बताइए।
0: अंडर और ओवर, कुछ भी आप अंडर करते हैं ओवर करते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो उसमें आपको हमेशा लेजीनेस या लथार्जिकनेस बनी रहती है। पर अगर आप बेबी की तरह सोते हैं, छोटे बेबी की तरह, तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ।
1: अच्छी,
0: 0, 1, 2, 3, 4, ओके। तो आप कैसे करेंगे उसको देखिए कि जैसे 4 आवर्स पहले आप सोने के कोई भी जो बहुत ज़्यादा मेहनती काम है उसको बंद कर दीजिए,
1: ओके,
0: ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज, जैसे आपने जिम का बताया या आपने योगा का बताया, तो जो कि फिजिकल पार्ट है योगा का, वो आप जहाँ तक हो नहीं कीजिए, और कर रहे हैं डायनेमिक नहीं कीजिए, धीरे धीरे आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप खाना, पेट भर के खाना छोड़ दीजिए, 3 घंटे पहले आप खा लीजिए
1: जी,
0: ठीक है। 2 घंटे पहले आप कोई भी, जैसे कॉफ़ी है, टी है, वो 2 घंटे पहले ख़त्म कर दीजिए
1: जी,
0: ठीक है। कोई भी स्टिमुलेशन जो कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन दे सकता है, एनर्जी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, कर लीजिए।

0: जो भी 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले पानी को मिनिमम कर दीजिए या आप
1: लेकिन कुछ लोग हैं जो सोने से पहले पानी पीते हैं.
0: हाँ, 1-2 घूंट आप पी सकते हैं.
1: हाँ.
0: या कोई वजह से आपने पूरे दिन में नहीं पिया और कुछ वजह हो गई तो बात अलग है. अगर आपको रात को सोना है तो 1 घंटे पहले या 1/2 घंटे पहले पानी को जरूर बंद कर दें. ठीक है. और 0, सोते समय मोबाइल
1: मत देखो.
0: देखो नहीं, सुनना है तो आप रिलैक्सेशन, हमारे मेडिटेशन है वो डाल के आप सुन सकते हैं. तो जिससे कि आपको नींद बेबी की तरह चुटकियों में आ जाएगी. अगर आप इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 को फॉलो करते हैं तो तुरंत आपको नींद आ जाएगी और आप बच्चे की तरह सोएंगे. उसमें अगर आपको 2 घंटे भी मिले हैं तो आप फिर इलेक्ट्रिक करंट की तरह सुबह उठेंगे. और जो आपने हरी का कहा, अगर आप छोटा सा काम कर लेते हैं कि अपने खाने को बदल के धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं तो आप डायनेमिज्म रहेगा, आप में डायनेमिक रहेंगे आप. पर इंग्लिश वाला हरी खत्म हो जाएगा, हिंदी वाला हरी आ जाएगा. और आपका सारा काम काफ़ी शांति से करेंगे तो जिससे कि स्ट्रेस भी कम से कम क्रिएट होगा और आपकी लाइफ मस्ती से जाए.
1: तो जितने भी हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने अगर मिस कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 हैं, 4 घंटे पहले जो भारी एक्सरसाइज होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए. 4 घंटे के सोने से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए. और जैसा आपने कहा कि खाना जो है 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेनी चाहिए. 2 घंटे पहले आप जो है
0: कोई भी एडिक्शन, चाय,
1: पानी, कॉफी, उसको रोक दीजिए.
0: 1 घंटे पहले पानी,
1: 1 घंटे पहले पानी. और फिर जब रात को सोना है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सेप्ट इफ़ यू आर लिसनिंग टू, यानी कि जो म्यूज़िक सुन रहे हैं.
0: म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई मेडिटेशन आप करना चाह रहे हैं तो वो सब अलाउड है.
1: हाँ,
0: तो वो करते करते आप सो जाइए.
1: हाँ.
0: और दिन में प्लान ऐसा कीजिए कि जैसे कि आप स्लो खाइए, स्लो पीजिए, इन 2 पे फोकस कीजिए ज़्यादा.
1: जी.
0: तो आप स्लो खाएंगे और स्लो बोलेंगे तो आपकी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों बन जाएगी.
1: कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब खाना खाते हैं तो मोबाइल देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीवी देखना पसंद करते हैं डिनर टाइम पे. तो मुझे लगता है कि ये सब आदतें जो हैं थोड़ी छोड़नी पड़ेगी ना,
0: बदलनी पड़ेगी. नहीं तो आप अपने ब्रेन को हर वक्त स्ट्रेस में और आप स्टिमुलेट कर रहे हैं तो जिससे कि ब्रेन को नहीं पता चल रहा कि मैं खाना पचाऊँ कि टीवी देखूँ.
1: हाँ.
0: तब दोनों का मजा नहीं ले रहा. आपका ब्रेन एट ए टाइम एक काम को बहुत अच्छे से कर सकता. हम मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं. हाँ. वो ट्रेनिंग से वंस इन अ वाइल अच्छा है पर रोज नहीं.
1: हाँ, लेकिन जहाँ तक आपकी बॉडी का सवाल है, जब आप अपने बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को वो टाइम दें जो उसको चाहिए, चाहे वो सोने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो उसको रिलैक्स करने के लिए हो. क्योंकि हम सब कुछ अपने बॉडी के लिए ही करते हैं. अगर हमें सजना संवरना होता है तो बॉडी के लिए होता है.
0: Right.
1: खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ही एनर्जी मिलती है. यानी कि जो भी हम करते हैं वो पूरी तरह से हमारे आसपास ही घूमता है. तो चाहे आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, चाहे आप हैप्पी दिखना चाहते हो, हेल्दी दिखना चाहते हो, जो भी करते हो अपने बॉडी के लिए करते हो तो करो, तो टाइम लेकर आराम से करो. चलिए, ये तो हमने बात कर ली. अब हमारे सोने की, खाने की, पीने की, अभी जब खाने की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा आजकल लोग हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक हेल्दी खा रहे हैं ये मुझे नहीं पता. आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि जब हेल्दी खाने की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारा खाना पैक हो जाता है, पहले से ही पैक हो जाता है, रेडी होता है, रेडी टू ईट. ये हेल्दी फूड है, इसमें ये है, ये है, ये है, पहले से पैक, एक हफ्ते से पैक होकर रखा गया है, ये हेल्दी फूड है. आप इसके बारे में बताइए.
0: हाँ, देखिए, जो चीज़ स्टोर हो गई और अगर आपके शेल्फ में या प्लास्टिक में पैक हो गई तो वो उतनी हेल्दी नहीं रहती. और धीरे धीरे आपका फूड उसमें माइक्रो प्लास्टिक
1: जी
0: या माइक्रो जो एजेंट्स होते हैं वो एंटर होने शुरू होते हैं और वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर होते हैं. तो हो सके तो आप कम से कम जैसे भी 80-20 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए कि 80 आप खाइए डायरेक्ट जो कि आपको डायरेक्ट मिलता है
1: जी,
0: यानी कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और 20 आप खाइए जो आपने पैक किया हुआ है
1: जी.
0: अगर आप उसका रेशियो फॉलो करते हैं तो आप इसको तो भी हेल्दी कैटेगरी में रख सकते हैं. सिंपल में बताया कि 20

0: परसेंट आप जो करते हैं, यानी कि ह्यूमन जो करता है, पैक करता है या बॉक्सेस में बंद है या शैशेज में है, वो 20%।
1: हाँ,
0: और 80% जो कि डायरेक्ट सोर्सेस से आपको मिलता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं।

0: डब्बे में पैक है, ठीक है, वो लीजिए, उसके साथ में आप उतनी की उतनी सलाद और सब्जी
1: जी,
0: राइट। अगर आपका जूपे 10 ग्राम्स का है तो आप 80 ग्राम्स या 90 ग्राम्स सब्जी उसके साथ ले लीजिए
1: जी,
0: तो आप इसको कॉम्पनसेट करेंगे और वो आपको हेल्दी खाने की तरफ लेके जाए।
1: जब हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो आपके हिसाब से जब हेल्दी खाना होता है, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घी है, मैं तो जानती हूँ घी हेल्दी होता है, तेल मुझे पता है, अगर आप वही जो तली हुई चीज़ें होती हैं समोसे पकौड़े वगैरह उसी ऑयल में अगर रोज़ जो बेचने वाला फ्राई कर रहा है तो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर घर पे आप लोग एयर फ्रायर का यूज़ कर रहे हैं या बेक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो स्टीम की हुई चीज़ें होती हैं इसको तो आराम से खा सकता है इंसान।
0: आपको इसका पकोड़ों का एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, आप खा सकते हैं नो डाउट, पर उसको कैसे करना है उसको हम समझते हैं। एयर फ्रायर का यूज़ या डीप तला हुआ क्यों हमारी बॉडी में हेल्प नहीं करता अच्छे से और क्यों ये जंक माना जाता है उसको हम समझते हैं। आप फैट जो है ना हमारी बॉडी में, चाहे घी हो तेल हो या नट्स हो, उनको हम डायरेक्ट कच्चा खाएं, पकाएं नहीं ज़्यादा, तो वो हमारी बॉडी में सही उपयोग होता है, ठीक है। अगर जब आप उसको गर्म करते हैं और यूज़ करते हैं तो वो आपके बॉडी को ब्लॉकर की तरह काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ
1: जी।
0: आपको पता है कि हमारी बॉडी में पूरे होल्स हैं
1: जी,
0: ओके, जो कि कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। तो जैसे आपने गैस स्टोव पे होल्स होते हैं, गैस स्टोव को बाहर आने,
1: वो हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
0: गैस के बाहर आने, आप उस पर ऑयल डाल दीजिए, वो जलेगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकली। तो इस वजह से जब हम बॉडी में तला हुआ ज़्यादा खाते हैं तो इंटरनल बॉडी में ब्लॉकेज डेवलप होती है और उसकी वजह से आपके सारे सिस्टम और प्रोसेसेस, फिर आपका उसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है
1: जी जी,
0: ठीक है, उसी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपको कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। तो वैसी सारी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए आप फैट को कच्चा खाइए
1: जी,
0: रॉ खाइए, आप घी लीजिए, आप उसको ब्रेड पे लगा के खाइए, चावल में डाल के खाइए, ऐसे कैसे
1: कच्चा
0: कच्चा, ऑयल को भी ऐसे ही खाइए, तो
1: सैलड में,
0: सलाड में खाइए, आप ब्रेड पे लगा के खाइए, ऐसे ही पी लीजिए, वो जैसे आपको समझ में आता है, पर जितना रॉ होता है वो उतना ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली फैट के मामले में। तो फैट आपको रॉ ही लेना है और आप घी जरूर लीजिए अगर आपको पसंद है तो, और नहीं तो आप सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड ऑयल, वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हम लोग प्लांट के बिना नहीं रह सकते
1: जी,
0: प्लांट हमारे बिना रह सकते हैं
1: जी,
0: तो इसीलिए हम जितनी चीज़ें प्लांट बेस्ड लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारा डाइजेशन उसमें ज़्यादा अच्छा होता है।
1: और जब हम लोग कहते हैं कि अगर आपको वज़न कम करना है तो चावल खाना बंद कर दीजिए,
0: नहीं, वैसा कोई नोशन नहीं है कि चावल और गेहूं या फिर मिलेट्स उससे आपका वज़न कम होगा, नहीं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो कि वज़न को बढ़ाते हैं, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें मिलके, और बॉडी में दूसरे बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट है, अगर आपकी लथार्जिक लाइफ है तो आपका वज़न पक्का बढ़ सकता है और सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से
1: जी।
0: जब आप स्ट्रेस अंदर लेते हो, आपके खाने का तरीका उसकी वजह से गलत हो जाता है कि जैसे आप बहुत अर्जेंसी में खा के चले जाते हो, आपका वज़न बढ़ने का आधे से ज़्यादा कारण वो है, या फिर आप जितनी कैलोरीज अंदर ले रहे हो या जितना खाना आप अंदर ले रहे हो उसको आप पचाते नहीं हो, क्योंकि आपका काम, जैसा कि आपने बताया कि आजकल हम कंप्यूटर या हम लोग सिस्टम ओरिएंटेड हो गए हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बीच में गैप लेके माइक्रो प्रैक्टिसेस आप करिए, तो जिससे कि आपका हेल्थ बढ़ा रहे और आपको ओबेसिटी ना हो।
1: तो स्ट्रेस तो आजकल हर कोई कहता है, ये बहुत बड़ी, ये स्ट्रेस जो है ना एक बहुत बड़ी वर्ड हो गई है आजकल, बहुत भारी वर्ड हो गई है, सब कहते हैं आह मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से मैं बीमार हो गया, स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से चेहरे में झुड़ियाँ। ये जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका कारण क्या होता है, और इसका सॉल्यूशन तो आपने बताया ही, लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है? ओवर थिंकिंग।
0: हम लोग अंदर चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, हम बाहर नहीं फेंकते, ओवर थिंकिंग भी है, और उसके बाद में जैसे कि नींद लोगों की पूरी नहीं हो रही है, जब वो 8 घंटे बेड पे हैं, खाना वो ढंग से नहीं खा रहे हैं, उनको टाइम नहीं है। तो ये दो चीज़ें अगर आप करेक्शन कर लें कि आप अगर सोए हैं,

0: ठीक है, बेड पे, पर नींद आपको सॉलिड आना, तो नींद सॉलिड आने के लिए आपको, अगर नींद सॉलिड आती तो भूख भी सॉलिड लगेगी
1: जी।
0: तो ये दो चीज़ें आपकी करेक्ट हो गई कि नींद आपको सॉलिड आने लगी और भूख आपको सॉलिड, तो स्ट्रेस वर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस वर्ड के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ये कॉन्सेप्ट आप एडॉप्ट कर लीजिए, जो कि आपको समझ में आ गया है और उसको आपको करना है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे सिंसियरली, 32 दांतों का पूरे वर्ल्ड में आजकल सबको पता चल गया है, तो कम से कम अगर आप कितना भी हरी में हैं तो 20 बार जरूर अपने, एक बार मुंह में आपने कुछ डाला तो चबाइए कम से कम
1: जी।
0: ओके, और ये वाला आप फॉलो कीजिए 0-4 टेक्निक, तो इससे आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। और जो माइक्रो प्रैक्टिसेस हमने बताई है 1-1 मिनट हाँ। की कि जैसे आपने स्माइल करके बैठ गए हैं ठीक है, फिर आपने डीप ब्रीदिंग किया अगले मिनट, फिर अगले मिनट आपने कॉन्शियस वॉक की, मस्ती से वॉक कर रहे हैं, तो वैसा वैसी सारी प्रैक्टिस छोटी छोटी आप कीजिए, जिससे कि आपको
1: रिजल्ट
0: तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए।
1: मैं अभी थोड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ अपने स्माइल के बारे में और मैं स्माइल के साथ साथ जब मैं ब्रीद भी कर रही हूँ ना, तो मैंने कभी अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं दिया। वो तब होता है जब हम लोग बैठते हैं योगा के लिए, डीप ब्रीदिंग करो तो ये हो जाता है, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा, जब आप बात करें तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो दिमाग है ना वो मेरे सांसों पर आ रहा है और मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ मैं ब्रीद कर रही हूँ। तो हमें अपने ब्रीदिंग पर हमेशा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए जब आप सांस ले रहे हो, जो कि हम करते नहीं हैं, क्योंकि जब हम बात, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किससे बात करते हैं, तो हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप ध्यान देते हैं तो आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं। यू कैन फील, आप ये अंदर तक जा रहा है और इसे हम फील कर सकते हैं, जो कि शायद पहले हमने कभी कोशिश नहीं की, शायद हमें पता नहीं था, लेकिन अभी आई होप कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे सुन रहे हैं इस समय, अगर आप लोग उसके बारे में एक बार सोचें, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, तो जब आप सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो अंदर कुछ लगता है कि कुछ असर हो रहा है।
0: ह्यूमन बीइंग, आपने जो कहा वो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस बीइंग है, एंड नॉट ओनली कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है। तो जो आप चीज़ें ध्यान से, जितना ज़्यादा अवेयरनेस और ध्यान से आप करते हैं उसमें उतना ज़्यादा बदलाव और आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो अभी हम कहते हैं ना ध्यान से करना, बी केयरफुल, राइट? तो वो केयर फ्री का एटीट्यूड आप जितना अडॉप्ट करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी अंदर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। और जितना आप अंदर की दुनिया से अपने साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता है कि अब हमें कैसे खाना है, कितना खाना है, कब नींद आ रही है, तो आप फिर तुरंत अच्छा सोने लगेंगे। और जितना आप डीप सोएंगे, साउंड सोएंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल जीरो होने लगेगा।
1: कुछ लोगों का मानना होता है कि जो लोग रात को सोते हैं खर्राटे लेते हैं, कहते हैं ये घोड़े बेच के सो गई तो खर्राटे लेके, यानी कि ये बहुत अच्छी नींद सो रहा है, ये गलत है।
0: खर्राटे लेना अच्छी नींद लेना नहीं है। खर्राटे जो ले रहे हैं उनका माइंड नींद में भी चल रहा है
1: जी,
0: उनका माइंड अभी शांत 100% नहीं हुआ है। तो खर्राटे ठीक है, थोड़ा सा कभी बीच में खर्राटे आ जाए बात अलग है, पर कंटिन्यूस खर्राटे लेना एक टाइप की बीमारी माना जाता है और उसको ठीक करना चाहिए।
1: और उसको ठीक करने का कोई इलाज?
0: हाँ, उसको ठीक करने का, जो कि हमने कहा, आप डीप ब्रीदिंग करते करते सोइए, सोते सोते बेड पे जब तक आपको नींद नहीं आती आप मेडिटेशन कीजिए या फिर साइलेंट लाफिंग।
1: साइलेंट लाफिंग यानी कि ओके, अच्छा ये साइलेंट लाफिंग होता है यानी कि आवाज़ मत करो,
0: पेट को हिलाते जाओ, बेड पे रहो पेट हिले, जब आप हंस रहे हैं तो पेट पूरा अंदर की तरफ खाली हो जाए, पूरा अंदर खींचते जाएं आप, और उसको रिदम से करें। जितना रिदमिक आप करना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर की रिदम
1: मैं कोशिश कर रही हूँ
0: आपने बहुत अच्छा किया है
1: मैं कोशिश कर रही हूँ
0: तो वो सेटल होने लगेगी और आपको नींद चुटकियों में आ जाएगी, जो कि खर्राटे
1: जी
0: के बिना वाली होगी।
1: तो यानी कि जितने भी लोग खर्राटे लेते हैं वो घोड़े बेच के नहीं सोते, उनको बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने का

0: सही तरीका है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और अगर आपने जैसे बताया कि साइलेंट लाफिंग यानी कि मुंह बंद हंस रहे हो, पेट अंदर जा रहा है और आपकी पेट जो है वो हिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप रोज़ करते हो तो ये खर्राटे लेना, लेकिन क्या इसको नोज़ से नेज़ल का कोई प्रॉब्लम, कोई लोग कहते हैं नाक बंद है ये है, तो ये जो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो खुल जाता है।
1: अगर आपका ध्यान भी उसी तरफ चला गया और आप नोस्टिल में एंटर करना सीख गए, इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर कराने पड़ते हैं। जैसे हमने 26 वर्ड 1 साल में सीखे थे, ABCDEFG,
0: जी जी जी
1: राइट? तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे, फिर आपको 1-1 मिनट की प्रैक्टिसेस
0: आराम
1: आप
0: से।
1: कहीं पे भी बैठ के कर लेंगे और अपने लाइफ को स्ट्रेस से बचा के जॉय की तरफ लेके जा पाएंगे और
0: ये
1: मस्ती से जीवन जीना शुरू कर देंगे।
0: तो ये जो लोग कहते हैं स्ट्रेस है, ये जो जैसा आपने कहा कि हमारी जो लाइफ है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें सारी परेशानियां हमने खुद डाली हैं। हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम यहाँ से वहाँ भागते हैं, हम ठीक से सोते नहीं हैं, रात को रील्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देर से खाना खाते हैं, रात के 10-11 बजे खाना खाते हैं, जैसे खाना खाया थक गए सो गए, खर्राटे ले लिए, यानी कि हम अपने आप को, ये कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो ये हम अपने हमारे ये जो सिचुएशन है कि हम बीमार हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, हमारा वेट गेन हो रहा है, इस सब की जिम्मेदारी हम खुद हैं, क्योंकि हमें अपनी जो लाइफ है उसे प्लान करना नहीं आ रहा है ना।
1: बिल्कुल सही है। तो इसलिए अगर आप वेलनेस सेंटर्स में जाके अपने आप को हेल्प करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन्स हो जाता है और आपका डिटॉक्स, जैसे आप घर को रोज क्लीन करते हैं, बॉडी के अंदर को आपने कभी क्लीन किया, मन के अंदर को आपने कभी क्लीन किया?
0: नहीं,
1: तो ध्यान जो है, ब्रीदिंग जो है, वो मन के अंदर को करता है, मेडिटेशन जो है और आपकी 5 तत्वों की जो चिकित्सा है वो आपके शरीर की, आपके इमोशंस की, भावना की क्लींजिंग करता है। तो अगर वो आप पीडियोट्रिकली बीच बीच में, जैसे 3 महीने में, 6 महीने में अपने आप को थोड़ा टाइम दे के वो अगर कर लें तो अच्छा है। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं क्या? पूछ रही हूँ मैं आपसे।
0: नहीं, मैं
1: नहीं,
0: अभी
1: लोग हम लोग
0: हाँ
1: जाते
0: हाँ
1: हैं ना,
0: हाँ
1: हम गए थे ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ठीक है, पर कभी हम हेल्थ स्कूल गए?
0: नहीं
1: हाँ, तो अभी ज़माना है हेल्थ स्कूल जाने का। तो अपनी हेल्थ को बनाने के लिए कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी ना,
0: जी जी जी
1: सीखनी पड़ेगी। तो हमने सालों बिताए, 20 साल, 15 साल अपने एजुकेशन के लिए, तो हेल्थ के लिए कम से कम 5 साल, एट ए स्ट्रेच नहीं, बीच बीच बीच में, जो कि आप चाहे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, बीच बीच में आप थोड़ा टाइम अपने आप को देते रहिए, तो जिससे कि आपका स्ट्रेस वर्ड 0 होने लगेगा या मिनिमाइज होने लगेगा, काम तक रहेगा और उसके बाद में मस्ती मस्ती।
0: अभी मैंने अभी तक जो भी सीखा आपने आपसे, मैं ये इसी कंक्लूजन पे आती हूँ कि आप जो भी करो बी कॉन्शियस।
1: 100% बी सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर एंड फिर करो।
0: आप सांस ले रहे हो, आप अभी आपने सारी जो समस्याएं हैं सबका समाधान दिया। आपने बोला ना कि स्माइल करो, तो हम तो स्माइल देखते हैं लोगों को, हेलो कैसे हो, स्माइल स्माइल करते हैं।
1: आप स्माइल दूसरों के लिए कर रहे हैं ना,
0: हाँ,
1: आप से अपने लिए भी करिए।
0: तो वही, तो अभी आप अपने लिए करोगे, और जब आप करोगे तो आप उस पे ध्यान दे रहे हो, है ना, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस पे ध्यान दे रहे हो, तो खुशी और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। अभी मैं बात कर रही हूँ, हंस रही हो, दुगनी हो जाती है। जब आप खाना खा रहे हो तो एवरी बाइट को एंजॉय करो, जो हम नहीं करते, मैं खुद नहीं करती।
1: आपने इतना मुश्किल से खाना बनाया, उसको एंजॉय करो डबल।
0: मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 5 मिनट में खा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ता है, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ करना होता है।
1: मुझे वेदिता जी पक्का विश्वास है कि आज ही से आप बदल देंगे।
0: हाँ, मैं अभी से बदल देंगी।
1: हाँ,
0: तो
1: और
0: ये
1: आज आप इत्मीनान से खाना खाएंगे, शांति शांति से बैठ के आप खाना खाएंगे, ठीक है? तो कम से कम 40 मिनट्स आपको बैठ के खाना खाना है,
0: जी
1: फिर आप देखिए बेड में जाते ही कैसे सो जाते हैं आप।
0: हाँ, तो ये भी होता है ना कि आप तो 40 मिनट, चलो 30 मिनट, मेरे सामने खाना है, 30 मिनट लेके मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ, तो मेरे बगल में जो लोग हैं कहते हैं, देखो 30 मिनट ले,

0: या खाना खाने के लिए, तो ये एक ताना बन जाता है कि अरे यार ये तो 30 मिनट तक बैठती हैं खाना खाने के लिए, वो ताना मारते हैं, तो उस ताने के ताना ना सुनने की वजह से लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। तो अभी अगर कोई कुछ कहे, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप अगर कम से कम 30 मिनट अपना जो खाना है उसको आराम से बैठ के धीरे धीरे खाएं, उसको फील करें, उसको एंजॉय करें, है ना, उसको एंजॉय करें। अगर हर कोई ऐसा करने लगेगा तो कोई ताना मारने वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ना कि लोग जैसा कि ना भागा दौड़ी हो रही है आजकल लाइफ में,
1: वो ताना नहीं, उनको क्या समझा नहीं है कि वो जरूरी है आपके शरीर के लिए। एक बार उनको समझ में आ जाएगा ना कि वो आपके शरीर के लिए जरूरी है। आप जो दौड़ रहे हैं वेदिता जी, वो सिर्फ इसीलिए कि आप थोड़ा जो भी हरी में खा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि उसको अब जब शांति से खाएंगे तो आपके घर में, आपके ऑफिस में और ज़्यादा शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्रिएट होनी शुरू होगी, तो उसका असर सबको दिखना शुरू होगा।
0: और मुझे ये भी लगता है कि जब आप एक अपने घर में माता पिता हैं, सब कोई हैं, भाई बहनें होती हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, फिर एक टाइम आता है सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि घर का जो कामकाज होता है उसको शेयर करना बच्चों के साथ, और एक पति का जो योगदान होता है, वो कहते हैं ना कि हम तो घर में वी आर द मैन ऑफ द हाउस, तो क्या होता है कि वो करते नहीं है कुछ, बहुत कम ऐसे होते हैं जो खाना बनाते हैं।
1: होता तो ऐसे है कि गृह लक्ष्मी तो आप हैं।
0: हाँ,
1: गृह लक्ष्मी तो आप हैं।
0: सब कुछ करना पड़ता
1: है। गृह लक्ष्मण तो हमने सुना नहीं आज तक।
0: तो हमें तो क्या करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना घर पे। तो
1: वो आपकी महानता है कि आप उसको करते हैं
0: जी।
1: और करते रहिए, दूसरों को भी धीरे धीरे उसमें सहयोगी बनाइए कि थोड़ा वो भी आपको हेल्प कर सके।
0: आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि लड़के जो हैं अभी खाना पकाने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और घर के काम काज में भी जो आज की जनरेशन है, मैं उनके बारे में बोल रही
1: हूँ, वो लोग हाँ। वो बहुत समझदार है।
0: मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि वो नहीं कहते कि भाई हम तो मैन ऑफ द हाउस हैं, हम झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे। वो पहले करते, कहते तुम कपड़े पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, हम झाड़ू पोछे में करते हैं, तो मैं खाना बना, तुम ये करो। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो ऐसे कपल्स जो होते हैं, वो कपल्स जो हैं, मैं कह सकती हूँ कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो बैठ के 30 मिनट खाना खाएंगे, वो बीच बीच में हंसेंगे, वो बीच बीच में अपना, पता है जब दोस्त की तरह, आप ये जो आपने अभी समझाया, अगर हमारी जो अभी की जो जनरेशन है ये सीखते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है इसी के साथ बड़े होंगे। तो अभी अगर हमने इस पीढ़ी को समझा दिया, सिखा दिया कि जो भी करो उस पर ध्यान दो, सोच समझ के करो, कॉन्शियस रहो उस पर कि आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो आपने वो क्या करेंगे, उनके बच्चे उनको फॉलो करेंगे, वो उनको सिखाएंगे कि नहीं बेटा खाना हमेशा इतना टाइम लेकर खाना चाहिए, आपको टाइम लेकर ये सब करना चाहिए, समय के साथ ये सब करना चाहिए। वो जब बैठेंगे और ऐसे हंस रहे हैं तो बच्चा आएगा, वो भी आके बैठ जाएगा, वो भी कर रहा है, तो वो बच्चा जो है अपनी माँ को हंसेगा नहीं, क्योंकि मम्मी ने उसके पहले बता दिया कि हंसना ज़रूरी होता है। तो वो बच्चा घर पर बैठ के एक टाइम आएगा जब वो भी करेगा ऐसे, क्यों हंस रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप थोड़ी देर बैठ के सांस ले रहे हो, आप टीवी देख रहे हो,
1: आप सेल्फ कॉन्शियसली आपको ब्रीदिंग,
0: आप बच्चे को बेटा एक्सरसाइज करो, चलो ब्रीदिंग करो, वो बच्चा करेगा, तो धीरे धीरे करके बच्चे की आदत हो जाएगी। तो बच्चे को सिखाने हर एक जनरेशन का, अगर अभी हमने इस जनरेशन का समझा दिया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसी के साथ, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर सब कुछ, इतना सब कुछ आसान हो गया है। जैसे कहती है ना, पहले लोग साइकिल लेके खेतों में काम करते थे तो डोले शोले बनते थे और उनका एक्सरसाइज होता था, उनकी उम्र लंबी होती थी, डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जितने भी शुगर होते, क्योंकि चीनी इंसान क्यों लेता था, इनर्जी के लिए काम कर रहा है, उसको वो चीनी चाहिए क्यों, उसको कार्ब्स क्यों चाहिए, 10 पराठे क्यों खा रहा है, उसको वो कार्ब्स चाहिए क्योंकि उसको बर्न करना है। लेकिन आजकल जो है हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग बर्न नहीं करते। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं वो करते हैं।
1: इसीलिए आज की डेट में हमें कॉर्पोरेट फूड खाना चाहिए, कॉर्पोरेट फूड जो कि आपका इजीली डाइजेस्ट हो सके
0: जी,
1: तो हम लोग कॉर्पोरेट फूड पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
0: जब हम कॉर्पोरेट फूड की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है?
1: कॉर्पोरेट फूड में जैसे कि हमने बात किया कि 80% जो कि नेचुरल सोर्सेज से आपको मिलता है, सारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, विटामिन जो कि सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट फूड।

0: में आते हैं जो कि फास्ट डाइजेस्ट होते हैं आपके सिस्टम में।
1: और कुछ खाना ऐसा होता है जिसको आप कच्चा ले सकते हैं, कुछ होता है हाँ। जो आपको स्टीम करना पड़ता है।
0: ये जो कॉर्पोरेट फूड है वो मैक्सिमम चीज़ें आप रॉ ले सकते हैं
1: जी,
0: वही कॉर्पोरेट फूड है जो आप रॉ ले सकते हैं और जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसको हम कॉर्पोरेट फूड का कैटेगरी दिया है। क्यों कैटेगरी दिया है? कि जैसे कि कॉर्पोरेट फूड फास्ट डेवलपमेंट होता है कॉर्पोरेट बिजनेस का, इसीलिए इस फूड में भी आपको फास्ट डाइजेशन मिलता है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप अगर आप संतरा खाते हैं और एक ब्रेड खाते हैं तो कौन सा जल्दी डाइजेस्ट होगा?
1: संतरा।
0: संतरा, तो इसलिए संतरा कॉर्पोरेट कैटेगरी में आ गया कि जो कि आपके शरीर को तुरंत न्यूट्रिशियस देगा और तुरंत हेल्थ देगा।
1: हाँ, लेकिन जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो या स्टीम करना पड़ता है या तो फिर उसको
0: जो जो नहीं कच्ची खाई जा सकती उनको आप स्टीम कीजिए।
1: आप क्यूकम्बर खा सकते हैं, चलो ये तो ठीक है,
0: क्यूकम्बर खा सकते
1: हैं, कैरेट ग्रेट कर सकते हैं, चुकंदर हो गया,
0: मूली हो गया, रेडिश हो गया, वो सब आप जो कच्चा खा सकते हैं, काफ़ी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे आप कच्चे खा सकते हैं। तो वो जो जो आप कच्चे खा सकते हैं डार्क ग्रीन कलर के, तो वो सब आप कच्चे खाइए। जो आपको लगता है कच्चा नहीं खाया जाता आपसे, उसको बॉयल कीजिए, स्टीम कीजिए, बेक कीजिए, एयर फ्रायर कीजिए और आप खाइए।
1: बिल्कुल,
0: तो वो आपको कॉर्पोरेट फूड की तरफ ले।
1: मैं सच्ची कहूँ, अगर मुझे और एक घंटा मिलता आपसे ऐसे बात करके तो मैं आपसे बहुत कुछ और निकाल सकती थी। और लेकिन जितना भी हमें आज मिला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर नीतू जैन, क्योंकि आपसे हमने बैठे बैठे बहुत ऐसे छोटे छोटे टिप्स सीख लिए जो कि मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको पता चल गया कि भाई इतना आसान है
0: हेल्दी रहना,
1: हेल्दी रहना
0: और वेलनेस की तरफ रहना पूरी जिंदगी। आप लाइफ में मजा करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए नहीं है, तो हम मजा करना।
1: म्यूजिक चलता है डांस करो, लेकिन खुश होके कॉन्शियस होके डांस करो, बोलो कि खुश हूँ डांस करो, तो ये होता है। तो हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पर अफसोस समाप्त होने जा रहा है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉरिशस आएंगी तो आपसे फिर कुछ और सीखने का हमें पूरा मौका मिलेगा।
0: धन्यवाद, धन्यवाद वेदिता जी,
1: बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है, आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। एक स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए जहाँ पर हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नीतू जैन ने हमें जीने का बहुत सिंपल सा, साधारण सा हमें कुछ ऐसे नुस्खे दिए हैं जो बहुत इजी हैं और इसमें आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
0: और कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम।
1: तो अभी अभी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग भी कीजिए, खुश रहिए। और इसी के साथ जाने का समय हो गया है, आज्ञा दीजिए, शुभ दिन।

0: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस की शागस पर संप्रभुता गैर समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ने यह प्रतिक्रिया दी है। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगे, विशेष रूप से ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगे। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में याद दिलाया गया है कि किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि, विशेष रूप से दूसरी नौकरी, कंसल्टेंसी सेवाओं या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आप जो खा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्पादों में अवैध पदार्थ पाए जा सकते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, विशेष रूप से गमीज, बिस्कुट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। देश के मध्य भाग में चलाए गए एक अभियान के दौरान आजसू ने कुछ कुकीज जब्त की और वैज्ञानिक विश्लेषण से ये पता चला कि इन उत्पादों में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नज़दीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटली नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेषकर जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। नालियों की सफाई के लिए प्रदान फंड्स के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मंत्री अजय गणेश के अनुसार पानी की निकासी को सुगम बनाने और बाढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए नालियों का नियमित रखरखाव और नदियों की सफाई आवश्यक है। और विदेश में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात अर्नब ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव से दोनों राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते दक्षिण ओडिशा के 10 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा मलकानगिरी में पुल डूबने से यातायात ठप है, नेशनल हाईवे बंद है और भद्रक में कई नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रायरोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त बैजनूत, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके घर रायरोड ब्रह्मस्थान से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। धनपत लेन बुआशेरी में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुदेवी लकिया, पैदाइशी नाम भिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुनाल लकिया के घर धनपत लेन बुआशेरी से उठाकर बुआशेरी की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में भक्ति धारा इस कार्यक्रम में समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भक्ति धारा कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हमेशा की तरह कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लाएंगे शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी का नाम लेंगे। और भगवान गणेश जी तो आपको पता है कि वो प्रथम पूजनीय है,

0: जितनी भी बाधाएं हैं हमारी जिंदगी में वो सब दूर करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम उनका नाम हम लेंगे।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्य

0: चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है धर्म का संचय एवं दुष्टाचरण का त्याग। तीसरे समुलास में महर्षि दयानंद ने धर्म का संचय और धर्म के चतुर्विध लक्षणों के बारे में चर्चा की है, अर्थात धर्म के चार प्रमुख लक्षण हैं। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में बताया गया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का पहला लक्षण है वेद। वेद ईश्वर का ज्ञान है और वेद परम प्रमाण है, वेद ईश्वर की अमर वाणी है। धर्म का दूसरा लक्षण बताया गया है स्मृति। स्मृति का अर्थ है ऋषियों द्वारा स्मरण किए हुए वेदानुकूल ज्ञान व ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथ। धर्म का तीसरा लक्षण है सदाचार, अर्थात अच्छा आचरण। अत्यंत श्रेष्ठ पक्षपात रहित धार्मिक महात्मा एवं उत्तम विद्वान पुरुषों व महापुरुषों का जो व्यवहार है वे सब सदाचार कहलाते हैं। वेदादि शास्त्र एवं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना भी सदाचार कहलाता है, उनके विपरीत चलना दुराचार कहलाता है। सदाचार पुण्य एवं श्रेष्ठ आचरण का परिचायक है और दुराचार पाप एवं दुष्टाचरण का पर्याय है। महर्षि दयानंद ने सदाचार को सुख का कारण बताया है। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में कहा गया है कि आचार परमो धर्मः श्रुत युक्तः स्मार्त एव च। वेद एवं शास्त्र के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण ही परम धर्म कहलाता है। धर्म का चौथा लक्षण है स्वस्य च प्रियमात्मनः। स्वस्य प्रियमात्मनः का अर्थ है जो अंतरात्मा को प्रिय लगे, जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार हो, जो अपनी आत्मा के अनुकूल हो। आत्मा व अंतरात्मा की वह आवाज जिसमें भी किसी झूठ या अन्याय के लिए कोई स्थान न हो, अंतरात्मा की आवाज धर्म का पर्याय माना गया है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना और असत्य का आचरण करना, असत्य को अपनाना अधर्म है। धर्म जिज्ञा समानानां प्रमाणं परमं श्रुति। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है। उनके विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से टकराती हैं, वेदों के विरोध में आती हैं, तो वेदों की बात को ही परम सत्य माना जाएगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में धर्म संचय और दुष्टाचरण अर्थात दुराचार से दूर रहने का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्म शनै संचिनुयाद भल्मीकमीव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थं सर्वभूतानि अपीडयन्।

स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी जीव को पीड़ा दिए बिना धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म का संचय कैसे करें? तो उत्तर मिलता है कि दीमक के समान। जैसे दीमक मिट्टी के कणों से धीरे धीरे अपना घर बना लेती हैं, इसी प्रकार अगले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा करना चाहिए। चौथे समुल्लास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म को जीव का सच्चा साथी बताते हुए पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया। महर्षि जी ने महाभारत के उद्योग पर्व से एक श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि पाप कर्म का मुख्य कर्ता ही दोष व पाप का भागी बनता है। एकाह पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषे न लिप्यते। एक व्यक्ति पाप करता है परंतु उसका फल पूरा परिवार या समूह भोगता है। भोगने वाले तो बाद में मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने वाला मुख्य कर्ता ही दोष का प्रमुख भागी बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है वही पाप का मुख्य भोगता होता है, परंतु जो पाप करने वाले के साथ होता है तो उस पाप का कठोर प्रभाव साथ रहने वाले को भी प्रभावित करता है, उन्हें भयभीत और दुखी करता है। चौथे समुल्लास में ही आगे महर्षि दयानंद बताते हैं, जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ क्या जाता है? मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। मृत्यु उपरांत जीव का परम सहायक कौन है? इस पर महर्षि जी वर्णन करते हैं, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारम न ज्याति धर्मस्तिष्ठति केवलः। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संग संबंधी उसके शरीर को मिट्टी के ढेले की तरह मृतशैया अर्थात चिता पर छोड़कर अंतिम संस्कार के बाद लौट जाते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं जाता, केवल उसका संचित कर्म व किया हुआ धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। इसलिए कहा गया है, जो जैसा बोता है वह वैसा ही फसल काटता है। परलोक में केवल धर्म ही मित्र और रक्षक के समान होता है। संसार में एक धर्म ही मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि कभी अधर्म का आचरण न करें। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। अधर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि सात्विक आहार तत्काल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए पाप व अधर्म का फल भी तुरंत प्राप्त नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्मी के सुखों को रोकता हुआ सुख की जड़ों को काट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। छल कपट और बेईमानी करने वाला अधर्मी मनुष्य शुरुआत में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है, वह सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। अंत में वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान समूल नष्ट हो जाता है। धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर समाज और राष्ट्र में शांति बनी रहती है और अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर समाज और राष्ट्र की शांति नष्ट हो जाती है, शांति भंग

0: हो जाती हैं। अतः चौथे समुलास में स्पष्ट किया गया है कि अधर्मी मनुष्य जड़ समेत पूरी तरह उसी प्रकार उखड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कट जाने पर एक हरा भरा पेड़ नष्ट हो जाता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में ही समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और हिंसक, क्रूर या दुराचारी लोगों की संगति से दूर रहता है, वह सच्चा धार्मिक कहलाता है। संसार के सभी व्यवहार वाणी पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट और मिथ्या भाषण द्वारा अपनी वाणी को दूषित करता है, वह सब पापों का भागी बनता है। चौथे समुलास में ही बुरे आचरण के दुष्परिणाम को रेखांकित किया गया है। पहला दुष्परिणाम है सामाजिक निंदा। दुराचारी व्यक्ति समाज और सज्जनों के बीच हमेशा निंदा व अपमान का पात्र बनता है। दूसरा दुष्परिणाम है दुख और रोग। दुराचारी व्यक्ति जीवन में निरंतर दुखों का भागी बनता है और सदैव कमजोरियों एवं बीमारियों से घिरा रहता है। तीसरा दुष्परिणाम है अल्पायु। कुसंस्कारों और गलत आदतों के कारण दुराचारी मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। वह अल्पायु अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को दुराचार से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में महर्षि दयानंद का स्पष्ट कथन है, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करें, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग करते रहें। धर्मयुक्त कर्मों के सेवन से पुण्य की प्राप्ति होती है और अधर्मयुक्त कर्मों को करने से हम पाप के भागी बनते हैं। धर्मयुक्त कार्यों में पुण्य की वृद्धि होती है और अधर्मयुक्त कार्यों में पाप की वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओं, 10:23 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और इस समय हम चला रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम चंदभक्ति गीत आपकी सेवा में। चलिए, शुक्रवार का दिन है, आज का दिन हम समर्पित करते हैं माँ दुर्गा को और माँ दुर्गा जो है आपको पता है ऊर्जा और शक्ति हमें प्रदान करती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये प्यारा सा भक्ति गान जो है माँ दुर्गा पर आधारित।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। माँ शेरावाली के दरबार में सच्ची श्रद्धा से झुका हुआ सिर कभी खाली नहीं लौटता। माँ अपने भक्तों को विश्वास, साहस और धैर्य की शक्ति देती है और माँ का सिंह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि निर्भय होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का संदेश भी है।

0: चलिए श्रोताओं, 10:36 हुए हैं और आपके लाए है एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान माँ तुलसी पर आधारित। आपको पता है कि माँ तुलसी जो है वो केवल एक पौधा नहीं बल्कि हमारे हिंदू परंपरा की में पवित्रता, श्रद्धा और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा जो है भक्ति साथ में प्रकृति में जुड़ाव की सुंदर हमें याद दिलाती है। तो चलिए तुलसी माता के प्रति श्रद्धा हम रखते हैं और हम अपने जीवन को संवारे, उनकी पूजा अर्चना करें और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान इसे ज़रूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ।
1: तुलसी की तुलना किसी भी दूसरे पौधे से नहीं की जा सकती, इसीलिए इसका नाम तुलसी पड़ा है। तुलसी अतुल और अनुपम है, ये एक अमूल्य औषधि भी है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा घर आंगन में लगाने की प्राचीन परंपरा है। इसीलिए तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी महान जंतुनाशक है। जहां तुलसी होती है वहां रोग फैलाने वाले जीव जंतु और विषैले जानवर प्रवेश नहीं कर पाते। गृहलक्ष्मी सुबह शाम तुलसी की पूजा करके और आरती उतारकर स्वास्थ्य लाभ करती हैं और इससे उनका चित्त प्रसन्न रहता है। अब तुलसी अष्टक सुनिए, जिसके 8 छंदों में तुलसी मैया के इसी रूप के दर्शन कराए गए हैं।

चलिए श्रोताओ, आज का दिन जो है संतोषी को भी पूछते हैं, और आपको पता है कि जब हम माँ संतोषी का व्रत करते हैं तो अनेकों उपाय जो है हम करते हैं, और बहुत ही विधि विधान के साथ उनका जो है नियम जो है नियमों के साथ हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इन नियमों का जो है पालन भी हमें करना होता है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है प्रदीप के स्वर में हम सुनेंगे।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले विलाज डे सुयाक, साथ में है मौसलमों ग्रीघी के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि रविवार 27 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए कार्यक्रम का समापन जो है कार्तिक के साथ करेंगे। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो आप सभी को हम कहेंगे।

0: स्टूडियो में आगे विद्यमान लेकर संक्षिप्त समाचारों से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की शागोस पर संप्रभुता गैर समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये प्रतिक्रिया दी। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगे। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में ये याद दिलाया गया है कि किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि, विशेष रूप से दूसरी नौकरी, कंसल्टेंसी सेवाओं या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नजदीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटली नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेष जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। और विदेश में दक्षिण पूर्व पोलैंड के यारोस्लाव शहर में एक कैथोलिक एबे के परिसर में चाकू से हुए हमले में एक पादरी की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एक 31 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति दोनों ने इस घटना पर गहरी निंदा और दुख व्यक्त किया है। इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। राय रोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त बोजनुत, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और पहले पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रारोद ब्रह्मस्थान से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। धनपत लेन बुआशेरी में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुदेवी लखिया, पैदाइशी नाम भिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुणाल लखिया के घर धनपत लेन बुआशेरी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। कारो आकाशिया थ्वा बुटीक में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती गंगू, जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके पति श्री राज जोवाहियर के घर कारो आकाशिया थ्वा बुटीक से उठाकर पैनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मधुलेन पुचिवेजे में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जामुंती फाउडो, पैदाइशी नाम पेतुब और जो सुनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे प्रदीप फाउडो के घर मधुलेन पुचिवेजे से उठाकर से कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। जुम्मतुल मुबारक का दिन हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया की मसरूफियात से कुछ लम्हे निकाल कर अपने रब की तरफ मुतवज्जा हों, अपने दिल को ज़िक्र इलाही से रोशन करें और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम नात सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं इस महफिल का सूरह अल-कहफ़ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु

ख्वाहिश है जो हर दुआ के साथ लबों पर आ जाती है, ऐ हमारे रब एक बार फिर अपने घर का दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह वो दिन भी हमारी ज़िंदगी में ले आ जब हमारी निगाहें पहली मर्तबा तेरे मुक़द्दस काबे पर पड़ें, आँखों से बे

तैयार आंसू बह निकलें और ज़ुबान पर सिर्फ यही हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ऐ अल्लाह हमें भी अपने घर के मेहमानों में शामिल फरमा, हमें भी और हमारे तमाम सुनने वालों को वो मुबारक सफ़र नसीब फरमा जिसमें कदम मक्के मुकर्रमा की तरफ पढ़ें, दिल तेरे ज़िक्र से धड़के और आँखें खाना काबा के दीदार से ठंडी हों। या रब हमें हजर असवद के सामने खड़े होने की सआदत अता फरमा, मुल्तज़िम से लिपट कर दुआएं मांगने का मौका दे, मुकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ना नसीब फरमा और आबे जमजम से हमारी प्यास बुझा। ऐ परवरदिगार हमें सफा व मरवा की सही नसीब फरमा, हमें मैदान अराफात में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने वालों में शामिल फरमा और हम सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। आमीन।

जी हाँ, मौज़ समीन, क्या अजीब कैफियत होती है उस शख्स की जो हज या उम्रा करके अपने घर लौटता है, सामान उसके साथ वापस आता है, कदम अपने वतन की ज़मीन पर आते हैं, मगर ऐसा महसूस होता है जैसा दिल अभी भी मक्के मुकर्रमा की उन्हीं पाक गलियों में रह गया हो। फिर मदीने की याद आती है, वो पुरसुकून फिजाएं, वो सब्ज़ गुम्बद के नज़ारे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया हुआ सलाम। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने एक मरतबा बुलाया, इसी तरह बार बार हमें और हमारे तमाम सुनने वालों को अपने घर का मेहमान बनाना और मक्के मदीने की हाज़िरी बार बार नसीब फरमा। लौट आए हैं हरम से मगर दिल नहीं आया, लौट आए हैं हरम से मगर दिल नहीं आया, वहीं छोड़ आए हैं जो साथ लेकर गए थे।

मौजे सामीन, आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं।

मौज़े सामीन, आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। इतवार 27 सितंबर, जी हाँ, इतवार 27 सितंबर सुबह 10 बजे सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी एकेडमी की जानिब से सर एडगो लोगों स्ट्रीट पोर्टलुइस में उर्स शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, उर्स गौसे आज़म का एहतमाम किया जा रहा है। आप सब को शिरकत की दावत है। इसके अलावा आइए समाअत फरमाइए एक और ऐलान। सनीचर 26 सितंबर, जी हाँ, सनीचर 26 सितंबर सुबह 10 बजे शाने रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्टलुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में उर्स गौसे पाक का इनकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं चंद पैगामात की तरफ। त्रियोलेस से कोमाली और बंधु फैमिलीज़ तमाम बहन भाइयों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ मगफिरत की गुजारिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा फौजिया, मरियम, आलिया, राबिका, जाबीन, फरजाना, अपने वालिद कसाम और अपनी वालिदा जुबैदा और अपने भाई इमरान गंगा अकूब के लिए दुआ मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा नूर जहां, फिरदौस, जुबैर, लुकमान दुआ मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। दादा कासिम, दादी जुबैदा और वालिद इमरान के लिए दुआ मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा दुआ मगफिरत की गुजारिश की गई है मोहम्मद हुसैन और बगालू और इलाही बकस फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पर मरहूम अजमल अब्दुल रहमान इलाही बकस के लिए। और वो हमारे प्रोग्राम को सुनना बहुत बहुत पसंद करते हैं, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और ये पैगाम हमें भेजा था फरीद और रुखसाना ने पोंपले मुसिस से। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं चंद और पैगामात की तरफ। जी हाँ, बोयरन और रुगीत फैमिली एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं अपनी वालदा हाफिजून के लिए, जो कि मिनिल की रहने वाली हैं, और इनके घर वाले इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ढेरों खुशियाँ दें। इसके अलावा वाकवा से नसरीन भी हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं, जिसके लिए हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। वो तमाम सुनने वालों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआगो हैं। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमें खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। इसके अलावा हम ख़ास दुआ करेंगे उन तमाम बच्चों के लिए जो कि इस वक्त इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं या इम्तिहानात दे रहे हैं, कि अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमाए। जी हाँ, गैब से मदद फरमाए कि वो अपने इम्तिहानात में आला कामयाबियाँ अता फरमाए। इस दुआ के लिए हमसे गुजारिश की है बहुत सारी माओं ने और हम दुआ गो हैं, ख़ास तौर पर मरीहा के लिए, कि अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, आमीन।

मौजूद सामीन, थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आज जुमतुल मुबारक के इस बाबरकत और मुक़द्दस दिन के वसीले से हम तेरे हुजूर अपने तमाम बच्चों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, जिनके इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों के लिए इल्म के दरवाज़े खोल दे, उनके दिलो दिमाग को रोशन फरमा, उनकी याददाश्त मजबूत फरमा, और जो कुछ उन्होंने पढ़ा और मेहनत से सीखा है उसे सही वक्त पर याद रखने और बेहतरीन अंदाज में लिखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक जितने भी बच्चे इस वक्त इम्तिहानात दे रहे हैं या देने वाले हैं, उन्हें उनकी मेहनत से बढ़कर बेहतरीन कामयाबी अता फरमा, और उनके वालदैन की आँखों की ठंडक बना। जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी किसी कोशिश को ज़ाया ना होने देना। जहाँ उन्हें मुश्किल पेश आए, वहाँ अपनी गैबी मदद शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को

नारायणस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः मंदल दीक्षकत्वेन संगीत प्रिये

श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आलयं अद्भुतमैन शिल्प कलकु प्राचीन सांप्रदायालकु प्रतीकगा निलुस्तुंदी। प्रतिरोजु वेलादी मंदी भक्तुलु स्वामी वारीनी दर्शिंचुकोवडानिकी तिरुमलकु वस्तारू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए श्रोताओ, स्टूडियो के घर में 2:30 बज रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम आपकी सेवा में रेडियो मॉरिशस के, जैसे भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज आप 408-8 पे हम आपका इंतजार करने वाले हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, तो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वो है 5517005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा संगीत जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितनी प्यारा संगीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। अगला गीत जो है हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेजेस पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय विश्वानी डुमन जी हैं और वाकवा की रहने वाली है। उनका ये मनपसंद गीत जो है जाएगा उनकी सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, उनकी सहेलियां हैं नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता। तो इन सभी लोगों के नाम पे ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और प्यारा सा गीत चांद और सूरज फिल्म से लिया गया। ये खूबसूरत सा गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। हमारे साथ जो है आप हैं सुनीता जी, कांगोप की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए प्यारा सा गीत आपके नाम पे हम करेंगे।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। कुछ ही घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत सुदेवी जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है वाकवास से। और ये अगला गीत थियोले की दीदी ललिता के लिए कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा देवीना है, मारेंगा के समस्त राम रतन परिवार है, संतोष है और

0: इन सभी श्रोताओं की मांग पे ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, ये अगला गीत जो है आप सुन सकेंगे, और ये अगला गीत जो है बहुत ही लोकप्रिय गीत है जो आप सुन सकेंगे। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे इसी चैनल पर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था और उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे, जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया और अब शक सही निकला है, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था। इस बढ़ते खतरे के मद्देनज़र फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है। मॉरिशस में एक खिलौने को खुलेआम बेचा जा रहा है। कई देशों में इस खिलौने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसे स्क्वीजी डंपलिंग कहा जाता है। दरअसल ये पाया गया कि ये खिलौना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सरकार रफ्तार को और तेज करना चाहती है। कृषि उद्योग मंत्री की सरपरस्ती में कल एक गोल मेज बैठक लगाई गई ताकि बायोमास की क्षमताओं को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर ये राउंड टेबल लगाया गया जिसमें सभी पक्षों ने एक ही मकसद से शिरकत की, 2035 तक 60% रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन करना। छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना, इसी मकसद से आज रिसाइलेंस परियोजना को शुरू किया गया। ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है। विदेश में आज से पोप लियो 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी महासभा लगाई जाएगी जहां आधे मिलियन से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डू ला कोंकोर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज़िलीज़े के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी है। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब। News on NBC Play and NBC.mu.
2: kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: श्रोताओं, दोपहर के 3:03 हुए हैं। आइए सेंट्रल एक्विस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ श्रोताओं, सेंट्रल एक्विस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। सैंक्वा के रहने वाले निवासियों को जिनमें है आली पेलावाल, जी हाँ जिनमें है आली पेलावाल, इसोडो बुके, सेंट मारी, ओंपा

0: chanteur le connu और सैंक्रॉक रोड के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस हैं। आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पे, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे। ये रेडियो मॉरिशस है, आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मन पसंद रेडियो चैनल पे।
1: आपकी पसंद
0: चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विद्या जी हैं, यूनियन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनकी बहन सती के लिए, साथ में सुरेखा, बबीता है विदना, विमला, प्रीति और साथ में है चाची कुमारी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है भरोसा, 1963 की मूवी है ये, और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये अगला गीत जो है हम चलाएंगे इन सभी परिवारों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस समय, जी हाँ, इस समय हमारे साथ

सिमला जी हैं बेलगोस की रहने वाली। ये अगला गीत उनकी फरमाइश पे साथ में है रूमा आरती। इंदिरा है, उनके भाई है राकेश, धीरज है, बेटा है नमलेश, बेटी कीर्तिना, ये सब लोग जो है जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। तो चलिए ये अगला गीत इन सभी लोगों के नाम हम कर रही हैं।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ अगला गीत जो है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से लिया गया, और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप है शिवरानी जी, शिवरानी जो है आप लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली है, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है हम पूरी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस फिल्म से लिया गया, आप सुन पाएंगे। और इसी गीत पे हम नाम जोड़ने वाले हैं, आप है राधा जी पिची वे अजय सैपिया की रहने वाली है आप, तो ये प्यारा सा गीत आपके नाम करेंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस समय अनीता जी हैं। अनीता जी त्रियोले की रहने वाली है, हमारे साथ जो है काफ़ी समय तक जुड़ी हुई है। उनका ये मनपसंद गीत फिल्म मदर इंडिया से लिया गया और ये प्यारा संगीत जो है जाएगा उनकी बेटी है अंजू, साथ में उनके दामाद वेद, उनका बेटा है सचिन, उनकी बहू है पूजा, साथ में है फिया, किया उनके दो पोते हैं हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म से लिया गया हम चला रही है।

चलिए श्रोताओं, एक से मनकर एक से पढ़कर एक गीत जो है आपके नाम हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो अगला गीत जो है फिल्म का नाम है लीडर, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाएगा इन सभी श्रोताओं के लिए। हमारे साथ इस समय उदय जी हैं और आप रिव्यज पुस्त के रहने वाले हैं। तो एक प्यारा सा गीत जो है फिल्म लीडर से लिया गया आपके नाम जो है हम कर रहे हैं, और इसी गीत पे हमारे साथ नाम जोड़ूंगी माला सुमारू का, जो कि कत्रबोन की रहने वाली है। साथ में है उनके पति सूर्यदेव जी।

तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। अगला गीत हमारे साथ जो है भाई हरी जी है वो बासा से, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो उनका ये मनपसंद गीत जो है, फिल्म का नाम है बाजीगर, और फिल्म बाजीगर का ये प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे उनकी फरमाइश पे। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे, विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

चलिए आपकी पसंद के रकम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत है यश सुजास के स्वर में, ये प्यारा सा गीत है, जाएगा प्रेमिला जी के लिए, काकोबोन की रहने वाली। ये गीत दिव्या के लिए, लव कुश, साथ में है प्रवेश, वंदना, प्रतिश और प्रकाश है, सभी विशेषर परिवार है और सभी देवनारायण परिवार है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद का कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। अंतिम नजाना हमारे साथ शोभा जी हैं, पोम्पियो मुसेस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे है। मौदार बैग अनिता, करुणा, अमृता, कविता, तो इन सभी श्रोताओं के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म, जी हाँ। और हमारे साथ वैसे काफ़ी लोग जो है, सभी के नाम नहीं जोड़ पाएंगे। वैसे अमीना जी है भोपाला की रहने वाली, ये गीत उनके सभी भाइयों बहनों के लिए और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत चला रहे हैं। तो चलिए छोटा इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा और हम आपको इशारा कर दें कि कुछ ही घड़ी में आप सुन सकेंगे गुलदस्ताए उर्दू कार्यक्रम। फिर आप ये अगला कार्यक्रम जो है आप, जी हाँ, अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और ये कार्यक्रम जो है आप अनवर की प्रस्तुति में सुन पाएंगे और ये उर्दू भाषा में ये कार्यक्रम जो है आप सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, हमारे जाने का समय आ गया है। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।

0: शायरी सिर्फ इजहार का वसीला न था बल्कि दिल की धड़कन थी, जिन्होंने अपने रंजो अलम को शेर बनाया, अपनी शायरी को जबान दी और इंसानी जज्बात की बारीकियों को लफ्ज़ों में ढाला। सामईन, पिछले हफ्ते से जब भी हम मीर तकी मीर का जिक्र करते आए हैं, एक लकब बार बार उनके नाम के साथ हमारी गुफ्तगू में शामिल रहा है, खुदाए सुखन। मगर आखिर मीर को खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है? उर्दू शायरी के इस अजीम शायर को ये बुलंद बाला मकाम कैसे हासिल हुआ? उनके फ़न में आखिर कौन सी दिलावेजी थी, कौन सा कमाल था, कौन सी तासीर थी जिसने उन्हें उर्दू अदब की तारीख में एक जुदागाना मर्तबा अता किया?
1: जहां तक मीर के लिए कहा जाता है खुदाए सुखन, भाई वो इसके मुस्तहक तो हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उर्दू अदब में दो शायर ऐसे हैं जिन्हें ये शरफ हासिल है कि उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। पहला दर्जा मीर का है और उसके बाद भी मीर ही हैं, लेकिन वो मीर अनीस हैं जिन्हें के मरसिए के लिए जो है कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों कहा जाता है? तो बहरहाल दानिश्वरों ने, उलमा ने बहुत से जो है ना इसके जवाब पेश किए हैं। मीर से पहले जो शायरी हो रही थी वो यूँ समझ लिए कि शायरी घुटनों के बल चल रही थी, जबान भी इस कदर साफ नहीं थी जितने के मीर के यहाँ हुई। इसके अलावा मीर ने एक तवील उम्र पाई, 90 साल से ज़्यादा जिए वो, और बहुत बड़ी बात यह है कि वो तमाम उम्र में बाकायदा अपने अव्वलीन दौर में, जबकि वो नौजवान थे, जवान थे, अधेड़पन का पहला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, आखिरी हिस्सा और फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे की फिर वो बदतरीज बढ़ती हुई आखिरी मंजिल तक, वो ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर, शेरी सतह पर, शायरी की सतह पर इतने एक्टिव रहे कि मुसलसल वो शेर कहते रहे। ये भी एक बहुत बड़े कमाल की बात है और ये शरफ भी सिर्फ मीर ही को हासिल है कि 2500 से ज़्यादा गज़लें उन्होंने कही हैं। और यही नहीं कि गज़लें कही हैं, गज़लें तो 2500 ठीक है, कोई आदमी बैठ जाए रोज़ाना दो कहने लगे तो साल भर में हो जाएंगी 2500 गज़लें, लेकिन वो गज़लें किस पाए की हैं, उसमें शेर कैसे निकाले गए हैं। अब ये तसव्वुर कीजिए कि 200 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन मीर मीर है साहब, मीर मीर है। अब ये देखिए कि कितनी उससे पहले की जो मैं कह रहा हूँ इतनी रवा गज़ल किसके यहाँ मिलती है कि उनकी वो गज़ल है, बड़ी मशहूर गज़ल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया, अहद जवानी रो रो काटा पीरी मैली आँखें मूँ, अहद जवानी रो रो काटा पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जाके सुबह हुई आराम किया। देखिए क्या खूबसूरत शेर का कि दोनों उसके सादे सीमी हाथ मिलाकर छोड़ दिए, सादे सीमी सात कलाई, सीमी चांदी जैसी कलाई। अब आप देखें महबूब के कलाइयों को चांदी की कलाइयां कह रहा है कि दोनों उसके सादे सीमी हाथ में लाकर छोड़ दिए, भूले उसके कौल व कसम पर हाय ख्याल खाम किया। अब कौन कहेगा ऐसे शेर, किसका बूता है और कौन इस हद तक पहुंचा है। हाँ फिर इसी गज़ल का वो शेर कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कशका खैचा तिलक लगाया, मतलब मीर के दीने मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कशका खैचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। तो साहब ये बातें हैं, या एक नहीं उनका एक मशहूर ज़माना शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, साहब महबूब के होठों को पंखड़ी से, गुलाब से और क्या कहते हैं बड़ा नाजुक कहना, ये तो न जाने कितनों हमारे जैसे शोरा ने

0: कहा है, इस शेर की खूबी यह है कि वो गुलाब भी नहीं कह रहे, पंखड़ी भी नहीं कह रहे हैं, उसे भी परे रख रहे हैं, वो कह रहे सी है। मुझे याद आया एक बड़ा मशहूर वाकया कि एक अमरोहा के थे एक बहुत बड़े खत्तात यानी कैलीग्राफर और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सादकैन, जो पाकिस्तान चले गए थे और हमारे अमरोही के थे वो। उन्होंने बेशतर शोरा के, गालिब के, मीर के अशार पे पोर्ट्रेट उन्होंने बनाए। किसी ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि सादकैन साहब, मीर का ये मशहूर ज़माना शेर कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, आप इस पे जो है कोई पोर्ट्रेट जो है बनाएं। कहने लगे यार सोचता तो मैं भी हूँ लेकिन बनाऊँ क्या, मीर साहब पंखड़ी गुलाब की नहीं कह रहे, पंखड़ी वो सी कह रहे, तो गुलाब या गुलाब की पंखड़ी तो मैं ले आऊँगा, वो मीर साहब ने जो सी कहा है वो अपनी तस्वीर में सी कहाँ से लाऊँगा। तो साहब ये बड़प्पन है कि आदमी मजबूर कर दे किसी एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के बाद कि उसके आदमी लुत्फ ले लेकिन बयान ना कर पाए। सादकैन के साथ यही हुआ, सी का हम मज़ा लेते हैं लेकिन वो सी को कोई बयान तो कर दे भाई, मेरे बस का तो नहीं है ना, जो है मैं किसी को समझ पाया। तो इस तरह से ज़बान के मामले में, बयान के मामले में जो एक बात और कही जाती है शायरी में कि क्वांटिटी और क्वालिटी, तो शायरी में क्वांटिटी की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी क्वालिटी की होती है। लेकिन मीर की एक बहुत बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी, ये किसी के यहाँ नसीब ही नहीं होता, कहीं मयसर नहीं है। गालिब के बारे में भी, गालिब का दीवान बड़ा मुख्तसर है और ये बड़ा मशहूर है कि उन्होंने इस कदर सख्त इंतखाब किया है कि जिसकी इंतिया नहीं। और हद ये है कि गालिब जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं और गालिब जो अपने दौर में अपने वक्त के लोगों को सेठता नहीं था, कोई अहमियत नहीं देता था, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो यह गालिब जिस शख्स को खराज अकीदत पेश कर रहा हो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बिला शुबा कि खुदाए सुखन मीर ही है, मीर तकी मीर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सामईन, मीर की जिंदगी, उनका अहद, उनका फन, उनकी शायरी, हर पहलू अपने अंदर एक अलग दास्तान रखता है। सो गुफ्तगू तो होती रहेगी, फिलहाल आइए गुफ्तगू को कुछ देर लफ्ज़ों के हवाले करते हैं और खुदाए सुखन मीर तकी मीर के चंद लाजवाल अशार से महजूज होते हैं।
3: चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। रंग हवा से यूं टपके हैं जैसे शराब चुआते हैं, आगे हो मैं खाने के, निकलो अहदे बादा गुसारा है। इश्क मैदानदारों में भी मरने का है वस्फ बहुत, यानी मुसीबत ऐसी उठाना कारे कार गुजारा है। दिल है दाग, जिगर है टुकड़े, आंसू सारे खून हुए, लोहू पानी एक करे, ये इसके लाला इजारा है। कोह कनो मजनू की खातिर दश्तों कोह में हम न गए, इश्क में हमको मीर निहायत पासे इज्जत दारा है।
2: मोहतरम सामईन, मीर ने उर्दू जबान व अदब को वो उरूज अता किया जो शायद ही किसी शायर ने दिया होगा।

उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम असासा उनकी शायरी है। उन्होंने उर्दू के 6 दीवान मुरतब किए, जिनमें गज़ल के साथ साथ मसनवी, रुबाई और कसाइद भी शामिल हैं। मीर ने उर्दू के अलावा फारसी ज़बान में भी तबाज़माई की। गई उम्र दरबंदे फिक्रे गज़ल, गई उम्र दरबंदे फिक्रे गज़ल, सो इस फन को बरा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां मैं तुम आए थे क्या कर चले। मोहतरम सामईन, गुज़िश्ता हफ्ते से गुलदस्ते उर्दू की बज़्म सुखन एक ऐसे अजीम शायर के नाम से मुअत्तर रही जिसने गम को गज़ल बनाया, तन्हाई को नगमा बनाया। मीर तकी मीर, उनके यौम वफात पर हमने उन्हें खैराज अकीदत खैराज तहसीन पेश की। मीर का ज़माना गुजर गया मगर मीर का ज़माना ख़त्म न होगा, क्योंकि बड़े शायर वक्त का मोहताज नहीं होते, वक्त उनके लफ्ज़ों का मोहताज होता है। मीर की शायरी दिल से दिल तक सफ़र करती रहेगी। सामईन, इसी के साथ हमारा आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार हैं। आइए इस बज़्म मीर को एक गज़ल पर तमाम करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मीर की गज़ल। खुदा हाफिज़।

उनमें मेन रीजन ये है कि हमारी नई नस्ल और नौजवान नस्ल दिन ब दिन बामल उलमा से और अल्लाह के नेक बंदों से दूर होती चली जा रही है, बल्कि उनके दिल में जहां बहुत सारे अंधेरे हैं तो वहां बामल उलमा और औलिया से नफरत का अंधेरा भी पैदा किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी साजिश है इस उम्मत के खिलाफ कि जब ये उम्मत बामल साहिबान इल्म से और सुलहा औलिया अहलुल्लाह से दूर हो जाएगी तो ये खुद बखुद तबाह हो जाएगी, खुद बखुद मिट जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो अल्लाह पाक ने जा बजा हमें और आपको ये कमांड दिया कि हम सालिहीन नेक लोगों की कंपनी ज्वाइन करें, उनकी सोहबत इख्तियार करें। इस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान इखलास और सिंसेरिटी से बामल साहिबान इल्म से पीरान आज़ाम से अल्लाह वालों से ज़ाकिरीन से जुड़े हुए हैं, उनसे कनेक्ट हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से महफूज हैं जिनको और लोग फेस कर सकते हैं। कुतुब रब्बानी शहबाज लमकानी गौसे समदानी आलिम उलूम सबए मसानी हामिल असरार सबए मसानी सैयदना व सनदना السيد السند عبد القادر الجیلانی نور اللہ مقدم نے اس امت کو جہاں صالحین کی صحبت صالحین کی کمپنی عطا کی तो वहां इस उम्मत को ऐसे सालहीन अदा किए अपनी मुरीदीन और मुतकदीन कि एक ऐसा लंबा सिलसिला और चैन अदा किया जो आज तक है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये गोल्डन चैन चलता चला जाएगा, ये सिलसिला नूर सुबह क़यामत तक चलता चला जाएगा। वो इसी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए उस नस्बत में नस्बत कादरियत में जब वो अपने हकीकी शक्ल में हो इस दुनिया की बेनजात है और उस जहां की भी निजात है, इस दुनिया का हसना जिस शक्ल में भी हो इस निस्बत से आता होता है और उस जहां का हसना वो जिस शक्ल में भी हो वो इसी निस्बत से इंशाअल्लाह आता होगा। बड़ी आसान दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।

याद है तो अच्छा है, नहीं है तो इसको मेमोराइज। नमाजों में, नमाजों के अलावा सुबह शाम ये दुआ मांगा करें। बच्चों के लिए एग्जाम होने वाले हैं, अल्लाह पाक माँ बाप को दुनिया के इम्तिहान के साथ साथ उनके कब्र, हशर, क़यामत के इम्तिहान की फिक्र भी, उसकी सोच भी दे। और अल्लाह पाक सब बच्चों को, बच्चियों को इम्तिहान में नुमाया कामयाबी अता करे। तो ये एक अच्छे रिजल्ट के लिए भी बड़ी उम्दा दुआ है।

ये एक अच्छे रिजल्ट के लिए भी बड़ी उम्दा दुआ है। कलायदुल जवाहिर में और आपकी सीरत पे जो और किताबें लिखी गई तकरीबन सब में ये है कि आपने फरमाया कि मैंने दोजख के दारोगा मालिक से पूछा कि क्या मेरे अस्हाब में से, मेरे मानने वालों में से कोई तुम में है। तो मालिक ने कहा जो दारोगा है दोजख जहन्नम है कि ला, आपके असहाब मानने वालों में से मुझ में कोई नहीं। तो ये जो है वकीना अजाब अल्लाह, ये अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा। वल्लाह सेव अस फ्रॉम हेल फायर। ज़ाहिर है कि आग के अजाब से बचने के मुख्तलिफ असबाब हैं, रीजन से। उनमें से एक औलिया की और हुजूर गौसुल वरा की निस्बत, उस निस्बत की बरकत से अल्लाह पाक एक तो सही अकीदा अता फरमाता है, और अकीदा सही हो तो फिर उस पर इस्तिकामत अता फरमाता है, और दूसरा यह है कि अल्लाह फिर नेकियों की तौफीक देता है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि बेअत से पहले उनकी जिंदगी और होती है और बेअत के बाद फिर उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ये वो निस्बत है जिस निस्बत का फैज उन्हें आता होगा। फिर आपने फरमाया कि मैं अपने मुरीदों पे ऐसा हूं जैसे आसमान जमीन में, जिस तरह आसमान ने पूरे जमीन को घेरा हुआ है, तो इसी तरह गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को, मोतकदीन को, जो भी अपनी निस्बत उनकी तरफ करे, उनको अपने दामन रहमत में और प्यार के दामन में घेरा हुआ है और लिया हुआ है। फिर आपने फरमाया कि मेरे मुरीद का मर्तबा आली ना सर, अगरचे उसका लेवल हाई ना, तो फरमाया कि मेरा मर्तबा अल्लाह की यहां आली है, बुलंद। इसमें भी आपने अपने मानने वाले, चाहने वाले अहले ईमान और सही अकीदा, जो सही अकीदा मुसलमान है, उनको एक बशारत दी, गुड न्यूज दी। लेकिन शर्त यह है कि अकीदा सही हो और सेहत अकीदा के साथ साथ सेहत अमल भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह के फजल और अपने नेकियों से, नेकियों के साथ अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। दोजख में जाएगा तो अपने गुनाहों की वजह से, अपने बद अहमालियों की वजह से। तो बैत करने वाले ये समझें कि बैत का पर्पस क्या है। दो हमेशा याद रखिए, पहला अकीदा सही है, दूसरा ये है कि अमल सही।

अगर बैत के बाद अकीदा सही है और अल्लाह पाक आपको नेकियों की तौफीक और गुनाहों से बचा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो बैत का पर्पस है उसको आपने अचीव किया, वरना वो पर्पस लेस बैत है, बेमकसद है, निस्बत के तकाजे हैं। और बहुत आसान लफ्जों में निस्बत के दो अजीम तकाजे हैं, डिमांड्स हैं। पहला डिमांड बिलीव्स का करेक्ट होना, अकायद का सही होना, दूसरा डीड्स का करेक्ट होना, आमाल का सही होना। आला हजरत नव्वर अल्लाहु कदहु ने ये जो फरमाया, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मेरी इज्जत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा। तो आपने देखा कि अल्लाह पाक ने उस निस्बत की क्या बहारें अता की, क्या बहारें अता की। आपकी वजह से मिलियंस बिलियंस लोगों के अकायद सही रहे और अल्लाह पाक ने आपको मनसब तजदीद अता किया, मुजद्दद, ये उसी निस्बत का फैज़ है। अल्लाह पाक हमें और आप सबको वही फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम अलैकुम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

शुक्रवार 25 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, शाम के 5 बज चुके हैं। गीत और गज़ल इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों का जो है हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आदाब आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है गीत और गज़ल इस प्रोग्राम में। हमें पता है हमारे बहुत सारे सुनने वाले गज़लों के बहुत ही शौकीन हैं, गज़ल सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। और जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, बीच बीच में अगर हमें गज़ल चलाने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर चलाते हैं। और आज तो एक घंटे तक जो है गज़लों की ये महफिल चलने वाली है। तो जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो बेशक इस प्रोग्राम में 5251700005 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इस खूबसूरत गज़ल के साथ आज के प्रोग्राम की शानदार शुरुआत करते हैं।

एक्चुअली गज़लों की बात करें तो मेहंदी हसन साहब की जो पुराने गज़ल है वो अपने आप में इतने खूबसूरत है, क्या कहे। मेहंदी हसन साहब की बात हुई है तो चलिए उनकी आवाज़ में ये गज़ल हो जाए, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए।

0: और गजल रेडियो मॉरिशस पर। मॉरिशस पर रेडियो मॉरिशस
1: पर। चलिए प्यार की बात करें तो प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सुकून तो देता ही है, उतना ही दर्द भी देता है। कभी कोई हमसे बिछड़ जाता है तो लगता है कि बस वो एक बार मिल जाए, भले दिल ही दुखाने के लिए आए, लेकिन आए तो सही, है ना। यही प्यार होता है। और इस प्यार को, इस मोहब्बत को, इस दर्द को जिस तरीके से गज़लों में ढाला जाता है वो अपने आप में, जैसे कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये अगली गज़ल

मॉरिशस। चलिए रेडियो मॉरिशस पर गीत और गज़ल इस प्रोग्राम में आपका साथ हमें मिल रहा है। ये जो प्रोग्राम है चलता है हर शुक्रवार को शाम के 5 से 6 बजे के बीच, और गज़लों का हर एक इंसान के जो है ज़िंदगी में एक ख़ास जो है मकाम होता है, एक ख़ास अहमियत होती है। और शायरी के लफ्ज़ों की बात करें या सुरों के मिठास की बात करें या जज्बातों की गहराई की बात करें, कहीं ना कहीं हर एक गज़ल सबके दिल को छू जाती है। और उम्मीद है कि आज का जो गज़लों का सिलेक्शन है आपको पसंद आ रहा होगा। अभी के लिए भूपिंदर सिंह और मिताली जी की आवाज़ों में पेश है ये अगली गज़ल।

जी हाँ, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं और प्यार के बिना ये ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं गीत और गज़ल इस प्रोग्राम में जो भी गज़ल आज हमने आपके लिए चलाए वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और अब बारी है इस आखिरी गज़ल की अनूप जलोटा जी की आवाज़ में, और इसी के साथ गीत और गज़ल ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा।

0: आपने आज भी हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो अगली मुलाकात तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आदाब आप सभी को।
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं, पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। मिजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। ग्रुप ने आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुर्शन महिला को गिरफ्तार, उसकी हिरासत में गमीज थे, जिनका मुताला करने के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया। शक सही निकला, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। और इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन वाले पाइपलाइन परियोजना में अफ्रीका के सबसे बड़े रईस जादे द्वारा $600 मिलियन से ज्यादा निवेश। नमस्कार राधा, मॉरिशस में पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। सयाहों यानी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। कई संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: मॉरिशस अभी भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सितंबर महीने के अंत में फ्लिकॉफ्लाक में ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ की धूप, समुद्र और गंतव्यों की सुंदरता से लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ लोग पहली बार के लिए टापू का दौरा कर रही है और अन्य लोग यहाँ की सुंदरता और स्वागत भाव से मोहित होकर प्रभावित होकर आते हैं।
3: Super expérience, ça fait 3 fois qu'on revient et c'est de mieux en mieux, donc je recommande à tout le monde. Franchement, les gens sont super accueillants, super souriants et ils partagent le peu qu'ils peuvent avoir, ils partagent avec tout le monde et ça c'est formidable.
4: Je crois que c'est la plus belle destination que j'ai fait de ma vie. On est tombé amoureux de cette destination et je crois qu'on va finir par venir ici tout le temps parce que c'est vraiment génial quoi.
5: It's amazing here. I love the sun, I love the weather. It's very nice because you can feel a little relax. I'm from Germany and everything is stress. Everywhere is stress and now I can finally relax a little bit.
2: आंकड़े भी यही दर्शाती है। 2026 के पहले 8 महीनों के दौरान 2025 में इसी अवधि की तुलना में करीब 3% की वृद्धि। पिछले साल के मुकाबले इस साल के अगस्त महीने में आगमन में अहम बढ़ोतरी दर्ज। सितंबर महीने के आखिरी वीकेंड में बहुत से होटल में बुकिंग दर काफी अच्छी रही। होटल विला कागोलिन के CEO अलें पिनापागानी ने कहा,
6: Nous sommes à 100% de taux de remplissage. Nous avons une clientèle très fidèle. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli partout. Et je pense que pour nous, ça paraît très prometteur devant.
2: पर्यटन मंत्रालय के स्तर पर प्राप्त हालिया आंकड़े पर्यटन आय में बदलाव दर्शाती हैं। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने कहा,
7: Après l'année record qui nous gagnait en 2025, et que nous gagnons une recette record, et nous gagnons une arrivée touristique record, et nous espérons qu'il nous pouvons faire encore mieux que l'année dernière, nous gagnons ça ben dernier temps-là, la guerre. La guerre du Moyen-Orient. Mais bien dire qu'il nous fait preuve de résilience, nous sommes assez proactifs. Nous mettons un vol supplémentaire des Mauritius, et nous aussi. Mis sur un short haul, c'est-à-dire un petit trajet, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Réunion et aussi l'Inde qui nous devrait faire. Mais comparativement, si nous guettons avec un compétiteur, c'est-à-dire les Seychelles et les Maldives, nous faisons mieux que maintenant.
2: इस सेक्टर को अतिरिक्त रूप से गतिशील बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से अलग अलग सेवाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने आगे बताया,
7: Nous pouvons guetter qui manière nous capable faire une réforme en profondeur. Donc là, moi, je pense à la Tourism Authority, la MTPA, l'école hôtelière sur Gaëtan Duval, qui nous a fait devenir une académie d'excellence. Et aussi, nous avons le blueprint qui est déjà prêt. Et aussi, nous avons le rebranding of Mauritius, qui va le faire pendant fort longtemps et qui nous permet d'aller l'avant.

0: तिमतिमाही के नज़दीक आने पर राष्ट्रीय उद्देश्य यही, इस गतिशीलता को बरकरार रखना और 2026 में 1.5 मिलियन पर्यटक आगमन के और करीब जाना या फिर इसे पार भी कर जाना।
1: साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था। उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे, जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया। शक सही निकला, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था। इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है। क्रिस्टेल लेब्रास, गीता सुनारान।
2: ऊपर से देखने पर ये साधारण जेली कैंडी जैसी लगती हैं, लेकिन इनके जरिए एक नए तरह के ड्रग तस्करी के मामले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आजसू के अधिकारियों की सतर्कता से तस्करों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस प्रेस ऑफिसर DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, पिछले साल आजसू ने फ्रांस से आने वाले एक व्यक्ति को विमान से उतरने पर गिरफ्तार किया था। कई सामान जैसे खाद्य पदार्थ, गमीज, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उनके पास से जब्त किए गए थे। आजसू की जांच के बाद पदार्थों को फोरेंसिक लैबोरेटरी FSL भेजा गया और नतीजों से पुष्टि हुई कि इन सिगरेट्स और गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए हैं और गांजा भी। स्थानीय तौर पर क्यूपिप के आजसू ने एक व्यक्ति को कुकीज के साथ गिरफ्तार किया था जिनमें ये पदार्थ थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता भी कम नहीं है। कैंडी के रूप में ड्रग्स का सेवन गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर सकता है, खासकर कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए। होम रिडक्शन यूनिट के डॉक्टर यश मधु कहते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, दिल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे ने इसका सेवन किया है और वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, ऐसे मामले कम हैं लेकिन जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। जांच अभी जारी है लेकिन परिवारों के लिए संदेश साफ है, अधिकतम सतर्कता बरतना जरूरी है। कैंडी और दूसरी मिठाइयों की सही जगह और स्रोत की अच्छी तरह जांच करना और बच्चों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना ही फिलहाल इस अदृश्य खतरे से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है।
1: प्रधानमंत्री ने बालाक्लावा में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में। सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया। इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मुशरस्को मृतक ओगांडोन के बारे में भी विचार करना चाहिए। काविन तापिसो, गीता सुनारान।
2: प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब से जुड़ी संक्रमण की बीमारियां और किडनी में पथरी जैसी कई यूरोलॉजिकल बीमारियों से सैकड़ों मॉरिशस वासियों को जूझना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोलॉजी कॉन्क्लेव इसी तरह ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें शामिल विशेषज्ञों में प्रोफेसर महेंद्र भंडारी भी हैं, जिन्हें यूरोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में गिना जाता है। वे अमेरिका के डिट्रॉइट में यूरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। प्रोफेसर भंडारी की विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल हैं। उनके अनुसार मॉरिशस को मृत दाताओं से अंग दान की व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
3: विद एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस,
2: उचित कानून, जनता को जागरूक करने, पारदर्शी वितरण और उच्च नैतिक सुरक्षा उपायों से मॉरिशस एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम विकसित कर सकता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का आकलन केवल तकनीक और बुनियादी ढांचों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि चिकित्सा कर्मियों की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
3: The renal transplant unit at the Nehru Hospital is an important step forward.
2: नेहरू अस्पताल

0: में रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में रिनल इलाज को ये मजबूत करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव खास महत्व रखता है। इस तरह की वैज्ञानिक बैठक में न सिर्फ नए विकास के बारे में पता चलता है, बल्कि उनका अध्ययन करने, अनुभवों को बांटने और जनता के लिए बेहतरीन तरीके से इन्हें अपनाने का भी मौका मिलता है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित भी किया गया।
1: डॉक्टर राम गुलाम रिप्रेजेंट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल माइंड ऑफ ए फिजिशियन द रीजनिंग ऑफ ए लॉयर एंड विजन ऑफ अ स्टेट्समैन। दिस मेक्स अ वेरी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन।
0: यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के इस तीसरे संस्करण में मॉरिशस और विदेशों से यूरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं।
2: आज ग्रेट ब्रिटेन की अदालत के पुराने अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्गर ने पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। बरतानिया कानून के क्षेत्र में इनकी गहरी छाप रही हैं। लॉर्ड न्यूबर्गर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में मॉरिशस के आकर्षण को मजबूत होते देखना चाहते हैं। उन्होंने भविष्य में एक मॉरिशन आर्बिट्रेशन सेंटर के जरिए मुख्तलिफ व्यापारों के संदर्भ में अफ्रीकी उद्योगों से मॉरिशस का चयन करने की हिम्मत दी है। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, मेजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। रियल एस्टेट परियोजनाएं पूरी करने के साथ साथ कृषि, शिक्षा और मनोरंजन गतिविधियों की बदौलत ये मुमकिन हुआ। ग्रुप के निर्देशन ने आज ये ब्यौरा पेश करते हुए आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी। मिगन पुनपनायकन, गीता सुनारान।
0: मेजिन ग्रुप कई क्षेत्रों में कारोबार करता है, जिनमें कृषि, रियल एस्टेट, शॉपिंग सेंटर और शिक्षा शामिल हैं। जून में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ग्रुप ने 7.5 बिलियन मॉरिशन रुपए के कारोबार की घोषणा की है। ये 2025 में दर्ज 3.4 बिलियन रुपए की तुलना में काफी बढ़ोतरी है। शुद्ध मुनाफा करीब 1.9 बिलियन रुपए रहा, जबकि एक साल पहले ये 139 मिलियन रुपए था। मेजिन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेबा काबडेविला जंगिया खान कहती हैं,
3: Cette année, effectivement, nous gagnons un bon résultat. Il y a une augmentation significative dans tous nos bonnes opérations.
0: रियल एस्टेट और जमीन से जुड़े कारोबार का टर्नओवर 4.6 बिलियन रुपए रहा। इसमें पीएफओ में 1400 प्लॉट की डिलीवरी का अहम योगदान रहा। रियल एस्टेट एसेट्स के प्रबंधन में भी 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जहां कारोबार 1.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, यानी 28% की वृद्धि। ग्रुप के अध्यक्ष इवान लेक्री कहते हैं,
4: réaliser qui nous racine dans l'agriculture et nous on a une grosse responsabilité envers le pays pour continuer à produire l'exportation pour l'exportation du sucre parce que ça ramène des devises étrangères qui sont short supply à Maurice et la sécurité alimentaire avec la production d'oignons. Production de pommes de terre, où Medine est le plus grand producteur. Mais le moteur qui amène le plus de revenus profitables pour nous, c'est le développement de nos activités opérationnelles.
0: ग्रुप अपनी 2027 से 2031 की रणनीति के तहत राजनीतिक साझेदारियां भी करने की योजना बना रहा है।
4: Tu peux assainir la compagnie, diminuer sa dette, et c'était ça le focus. C'est-à-dire qu'il nous donne une bonne position, nous peut cause dans qui nous peut investir, dans qui nous peut développer, et comment nous peut créer la valeur durable pour tous les stakeholders de Medine. Et c'est ça la feuille de route 2031.
0: जहाँ तक मनोरंजन क्षेत्र की बात है, काजिला में 270,000 पर्यटक पहुँचे, इससे 586 मिलियन रुपए की आय हुई। पार्क इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना पर भी काम कर रहा है।
2: मेड इन मॉरिस से लेबल के लिए एक प्रोग्राम लागू है। 87 सेक्टरों में 31 उद्योग इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। मॉरिशियन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की पहल पर मॉरिशियस कमर्शियल बैंक सहायता दे रहा है। कल मौका में प्रमाण पत्र दिए गए। मौके पर स्थानीय उत्पादकों ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन की मांग की।

0: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस पहल से नवीनीकरण, निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे। न्यूयॉर्क में ही मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री रितेश रामफल ने बरतानी विदेश मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी एड मिलीबैंड से मुलाकात की। शागुस पर खास तौर पर बात हुई है। मंत्री रामफल ने कहा कि एड मिलीबैंड ने एक हल ढूंढने के लिए बरतानी सरकार का इरादा दोहराया, एक ऐसा समाधान जिससे अमेरिका समेत सभी पक्ष सहमत हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हमारी टीम आज पुस्तुफला के शिवसागर मंदिर गई थी, जहां की महिलाएं इस पूजा में भाग लेने के लिए एकत्र हुई थीं। यचना मिश्रा की रिपोर्ट।
1: लाल साड़ी ओढ़े ये सभी महिलाएं अनंत भगवान की पूजा करने के लिए आज एकत्र हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। हर उम्र के लोग ये व्रत रख सकते हैं, जिसकी पूजा विधि समुद्र या नदी किनारे की जाती है।
2: ढेर दिन से है व्रत रखी ला, सुबह तो हमार कुछ नहीं रहा। कैसे भगवान जी बोलत कि है व्रत करवा था तो हर सब धन सब कुछ हो जाए।
3: छोटा वो से अपन घरे वो साजो नहीं रहा तब भी अपन कारम रहली पागे लौके ना कोनो सोनो बा तनी बरकत होला घर में, पति के काम में, सब परिवार के सुख शांति के लिए है व्रत रखी ला।
4: स्नान करला के बाद सूर्य अर्पण करला सा अब घर में तब मिठाई पकैला सा तब दिया वो जला के और पूजा पाठ करला सा माला जाप करला सा और जो मिठाइयाँ पकैला सा चढ़ाईला सा फिर वहाँ से करके तब मंदिर आयला सा।
5: मामा दी भी तो इतना शिपे गा कारमला गिट गिट ली और सामिक ली मुझसे मुखमा से गाड़ी ली पिता शिपछी।
1: पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इन गांठों और इस व्रत की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं।
6: कथा भगवान विष्णु जो नवा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोलेला, जब पांडव लोग 14 वर्ष खातिर वनवास रहा, विष्णु जी बोलन कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कि हम तो लोग के एके गो व्रत बतावत हैं। तब बोलतन कि हमर भाई देजा घरे हवन नहीं, जंगल में फल फूल खा करके निमन से भोजन करत नहीं हवन, तब पर भी प्रभु बोलत हुआ कि ओके व्रत रखे के। तब बोलतन नहीं, दिन भर व्रत नहीं बा, ई व्रत आधा दिन खातिन है, चतुर्दशी। अविवाहित लोग जितना लोग जवान हवन शादी नहीं कलवन तो श्वेत उज्जर धागा बांधाला, और जितना कोई जुनबा शादी शुदा है वो पीला रंग के धागा 14 गांठ के बांध करके अपन हाथ में बांधेलन से अनंत भगवान के पूजा होला। और एकर में विशेष करके प्रसाद के रूप में पुआ चढ़ेला।
1: पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करते हैं। ये सूत्र भगवान विष्णु की कृपा, रक्षा और अनंत शक्ति का प्रतीक है। अनंत भगवान की कथा सुनाई जाती है, जिसके बाद हवन किया जाता है।
7: ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, अनंत देवाय नमः स्वाहा।
1: ये आधे दिन का व्रत होता है, लेकिन इससे प्राप्त आशीर्वाद आजीवन साथ रहता है।
0: मॉरिशस और चेन्नई के बीच नया सहयोग। मॉरिशस की स्वास्थ्य काबिलियतों को बेहतर करने के लिए अपोलो प्रोटीन कैंसर सेंटर के डॉक्टरों का डेलीगेशन मॉरिशस में है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के साथ मुलाकात लगी, जिसके दौरान ये उल्लेख हुआ कि विदेश जाने के बजाय मरीजों को यहीं पर इलाज दिए जाएं। इसके अलावा नौजवान मॉरिशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
8: मॉरिशस में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में पहले से ही अच्छी विशेषज्ञता मौजूद है, लेकिन चिकित्सा के कुछ अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के साथ ये सहयोग न केवल मॉरिशस में उपचार की सुविधाओं को विकसित करने पर केंद्रित है, बल्कि ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार

0: आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा।
1: आप सभी जानते हैं हमारे मॉरिशस के जो पेशेंट्स है, जो बीमार लोग हैं, हम भारत भेजते हैं तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन प्रश्न कभी ये उठता है कि अगर ये सब सुविधाएं मॉरिशस में हमें प्रदान की जाएगी तो हमारे लोगों के लिए, मरीजों के लिए अच्छा होगा। दो साल से जब से हम लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी डॉक्टर आए हैं भारत से, लेकिन दो तीन ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर कम लोग आते रहे हैं। जैसे स्पाइन की बात करते हैं, कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं क्या समस्या है देश में, तो इन ये सब क्षेत्र में ये अपोलो के जो बड़े डॉक्टर है वे लोग हमको सहायता करेंगे और आने वाले समय में यहीं पर ये सब सर्जरी हम लोग करेंगे।
0: प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से विशेष रूप से युवा मॉरिशस के डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में नई दक्षताएं हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
2: वी नीड टू डेवलप अ सिचुएशन वेयर पेशेंट्स इन मॉरिशस हैव अ ट्रस्ट इन द लोकल डॉक्टर्स, एंड फॉर दैट इट मे टेक टाइम, इट मे टेक 4 to 5 years. But if Apollo can provide the senior faculty to come here periodically to train and to hold the hands of the local surgeons, upgrade the equipment, then I think it's realistic to believe that in 5 years, Mauritius can self-support their own medical care in neurosurgery.
3: We look forward to a cooperation between Mauritius and our Apollo hospitals. And we propose the partnership can bring specialist outreach, second medical opinions, telemedicine, teaching, training, clinical knowledge exchange and structured access to advanced care.
0: मॉरिशस में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को विकसित करना, स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञता को मजबूत करना और मरीजों को बिना विदेश जाए अति आधुनिक उपचार उपलब्ध कराना, यही इस सहयोग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है और आने वाले समय में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में मॉरिशस और चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के बीच नए समझौतों का रास्ता भी खुल सकता है।
4: अफ्रीका का सबसे बड़े रईसजादे नाइजीरिया के करोड़पति अली को दंगोते ने ऐलान किया कि वे इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन के नए पाइपलाइन के निर्माण के लिए $660 मिलियन की वित्तीय सहायता देंगे। ये परियोजना 120 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के लिए है जो 400 मिलियन लीटर ईंधन को स्टॉक करने की क्षमता रखेगा। 18 महीनों में काम शुरू किए जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान में अपनी सेना के सैन्य अभियानों की प्रतिरक्षा की। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से मुखातिब होने से पहले ही अनेक डेलीगेटों ने वॉकआउट किया। नेतन्याहू ने दावा किया कि जीत उनके ही देश की होगी और वो जंग को नहीं रोकेंगे। गजा में जेनोसाइड के इल्ज़ाम को उन्होंने झुठलाया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो के जरिए सभा को संबोधित किया क्योंकि अमेरिका ने उन्हें एंट्री वीज़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम खून खराबे, बर्बादी और भुखमरी का शिकार बना हुआ है, इसलिए उनका पैगाम अमन और शांति के पक्ष का मरकज़ है। आज से पोपलियो 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी मास सभा लगाई जाएगी जहां 500,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डे ला कोंकोर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज-एलिजे के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी होगी। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोपलियो का स्वागत किया गया। अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में दक्षिण से आ रहे कुछ बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और कल सुबह भी और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगा। और कल सुबह 5:56 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

नंबर एक इंकर मैन स्ट्रीट वाली पिटो में 74 साल की 74 years old श्रीमती बिदवंती ओमिया, श्रीमती बिदवंती ओमिया पैदाइशी नाम दाउताल, जो सती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे मुरा फ्यूनरल पृथ्वीत्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। पाउडर मिल रोड डंकान लेन पोम्पलमूस में 46 साल के 46 years old श्री विशाल ओरादन, श्री विशाल ओरादन जो विशाल माइनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी सुनीता ओराधन के घर पाउडर मिल रोड डंकान लेन पोम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनूस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कौमाया लेन कौंडिमास्क पावे में 60 साल की 60 years old श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया, श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया पैदाइशी नाम जीवता जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके पति सामी कौमाया के घर कौमाया लेन कौंडिमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडिमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

Desi Radio 24 hours a day. कुछ विज्ञप्तियां सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्लेनपार्क के निवासियों को सूचित करता है कि कल शनिवार 26 सितंबर को रॉयल रोड ग्लेनपार्क के एक भाग में मुंबई रोड नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में तथा आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक, गौपर रोड ग्लेनपार्क में दिन के 11 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी लामाघी के निवासियों को सूचित करता है कि रविवार 27 सितंबर को रॉयल रोड लामाघी के एक भाग में मालाकोफ और मिगन लेन में सुबह 9 बजे से दिन के 11 बजे तक, रॉयल रोड लामाघी और नाटू लेन में दिन के 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सुयाक और मोसिल मंगरीघी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रविवार 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और लामाघी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोंटेजुफिल अकासिया 1, 2, 3, 4 और 5, रू क्रेमासियों, रू इरादन, रू साइप्रस, रू बेतो और आसपास की गलियों में रविवार 27 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इधर फिनिक्स के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रॉयल रोड के एक भाग में, रॉयल रोड फिनिक्स के एक भाग में, उस आसन राफा रोड के एक भाग में, हजारी सिंह लेन के एक भाग में, रॉबिन्सन लेन 1, 2, 3 और 4, फिक्सों, सर अब्दुल रजाक मोहम्मद सेंटर, क्यूबिकल, इनोजिस वुमेन सेंटर और आसपास के इलाकों में रविवार 27 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस

0: असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रत परमभोत्सवम के संदर्भ में कोदो विलेज हॉल में शनिवार 26 सितंबर को शाम 6 बजे से सालाना गोविंद पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गोविंदन तिरुविजा के संदर्भ में शनिवार 26 सितंबर को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक बोनाकई टेम्पल एसोसिएशन अरुण मिगू महा मरियामन तिरुकोविल रॉयल रोड बोनाकई में विशेष पूजा सत्र लगाए जा रहे हैं। शनिवार 26 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ला निकोलिए जलाशय में गहलोत राजपूत महासभा द्वारा वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नादेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर द्वारा रविवार 27 सितंबर सुबह 8:30 बजे एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रविवार 27 सितंबर 2026 सुबह 5 बजे से दिन के 3 बजे तक श्री शिरडी साई महिमा डिवोशनल ग्रुप गंगा तलाव में महाविभूति अभिषेकम और महासरस्वती यज्ञ का आयोजन कर रहा है।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: रेडियो मॉरिशस

听众朋友，今天的客家话好过宋明的节目差不多接近尾声，我要听大家告别，和我等人在下次同一节目时间再见。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेकर। तो श्रोताओ, सर्वप्रथम हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जितने भी बाधाएं हैं हमारी ज़िंदगी में वो सब टल जाती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें।

डॉक्टर के हम सफ़र साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भजले प्रभु का नाम, बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही शांत मन से हम भगवान को याद करते हैं। और आपको पता है शुक्रवार का दिन जो है हम माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं, और आपको पता है माँ जो है हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे अगले भक्ति गान के साथ।

भजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं। चलिए चन्ने प्यारे प्यारे जो है भक्ति गान आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। और आपको पता है जब मन शांत होता है तो हम आसानी से प्रभु के पास जो है हम पहुंच जाते हैं, और बहुत ही विश्वास के साथ जो है जो भी हम मांगते हैं प्रभु से हमें प्राप्त होता है। तो कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पर।

बजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं तो चलिए आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं चंद प्यारे प्यारे भक्तिगान, जो फरमाइश आप करते हैं हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है हमें अपना जो मन है उनको साफ रखना है ताकि हम प्रभु के पास जो है हम पहुंच सके बहुत ही आसानी के साथ। और जब मन साफ होता है तो हम जो है बहुत ही निर्भयता के साथ उनको हम पूछते हैं। और कहते हैं ना, जब कार्य जो है हम जिंदगी में अच्छे करते हैं तो हमें अच्छा फल ही मिलता है। तो हमें सच्चे मन के साथ अच्छे कार्य करते करना है और दूसरों की सेवा हमें करना है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

भी जो आ रहा है वही खुदा है। इससे ज़ाते बाबरकते का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसने हमें सच्चाई की राह पर चलने और हक की बात कहने की तौफीक और हिदायत दी। सामईन, ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार दौर में हम अक्सर छोटी छोटी बात पर झूठ का सहारा ले लेते हैं, ये सोचे बगैर कि ये मामूली सी गलत बयानी हमारे किरदार और हमारी रूह को किस कदर दीमक की तरह चाट जाती है।

ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात महफिल शब में। मज़ीद सामीन, सच्चाई कोई आम निज़ाम नहीं है, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम है। सच इंसान को खौफ परेशानी और बातरी बोझ से आज़ाद कर देता है। सच बोलने वाला शख्स दुनिया की नज़रों में भी मुअत्तबर होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त

सत्य की बारगाह में भी हुरू होता है। अकीदतमंद सामईन, जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो हमारे आका ख़तमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशअल-ए-राह है।

अज़ीज़ सामीन, जब इंसान सच्चाई को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी सच्चाई में ऐसी बरकत और तासीर पैदा फरमा देता है कि वह न सिर्फ खुद बदलता है।

बल्कि दौरे हाजिर के गुमराहों को भी राह रास पर ले आता है। मजीद सामीन, सच बोलना निजात का बाइस है और सच्चाई इज्जत की वो बुलंदी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। या अल्लाह, हमें सच्चे बोलने और सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, हमारी जबानों को झूठ से पाक फरमा, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। परवीज़ा को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, सच्चाई की शमा जलाए रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का।

नमस्ते, हमनी के सब श्रोता लोग के स्वागत करे थे जा रेडियो मर्शस और रेडियो मनोरंजन पर प्रस्तुत करे थे जा हमनी आज के भोजपुरी तड़का। और भोजपुरी तड़का में तो हर पसंद के गाना हमनी जरूर पेश कर अब जा चला। तो हर खातिर नंबर हमनी बोल दे ला जा 5251700005 पर मिसाल सक बजा भेजे जे टेलीफोन ही करे खुच बजा तो 4028085 इन नंबर पर हमें के टेलीफोन करिए जा और बोलिए जा कौन गाना सुने खोजे थवा। चलो भोजपुरी के तड़का लगाओ अब जा, भोजपुरी के गीत संगीत तोहर नाम कर अब जा। अभी तो चल आगे के जमाना के बात सुनी जा, गांव के लफों तेनवा जब रहल तो कितना सुख शांति और भाईचारा रहल। ये गाना सुने थे जा हमने राज कमाल चिंतामणि जी से।

राज कमल चिंतामणि जी के गावल गांव के लाफों तेनुआ ई गाना चंदी जा हमने अभी चला आमी प्रस्तुत करी जा एगो गाना ज्ञान महिपत लाल जी के आवाज में और ई गाना हमने आत्माराम चाचा खातिर बजवावत थे जब भी लेके आत्माराम चाचा जी के जन्मदिन बा और उनकर जन्मदिन के अवसर पर उनकर खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और ललिता जी मंगले हवन जा ई गाना और उनका जन्मदिन के ढेर ढेर बधाई देवत हवन जा हमने के पूरा टीम बगल से आत्माराम जी तोहरा बहुत बहुत मुबारकबाद तोहरा सेहत अच्छा रही भगवान तोहरा अच्छा सेहत दे और ये परिवार के बीच में ढेर प्यार दिहन भगवान तोहरा आत्माराम चचा तोहर जन्मदिन बहुत बहुत मंगलमय रही।

चला तारा बना पेची बनला है जा चट्टनिया गाना तो हलक के परोसत है जा मीरा मोहन जी के गावाली गाना चला सुनी जा हमने गायत्री जी के पसीन पर नोवेल फॉन्स से गायत्री जी अवन बेटा अजय खातिर मंगले हवन माई बू के मामी कल्याणी मोहन खातिर और मोतालोंग के भाभी शकुंतला जी खातिर और यही गाना मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फॉन्स के अपन सखी गीता बाई खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चला सुनी जा हमने वंदना हमर सोना ई हर रोशन सदा सिंह जी के गावल गाना। ई गीत हमने से मंगले हवन मौतालबिया से अनीता लाल जी और लाल जी परिवार खातिर इत्तू परिवार खातिर और गोगा परिवार खातिर मंगले हवन अनीता जी गाना। तो चला अनीता जी संगे मिलके सुनी जाए गीत।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का तो हर खातिर और भोजपुरी तड़का में हमने भोजपुरी बोलिया के जय जयकार करब जा विनोद सिवदत्त जी के साथ मिलके और विनोद सिवदत्त जी के गावल ई गाना हमने नाम करब जा ललिता कुशल जी के थैले से ललिता कुशल जी गाना मंगले हवन आदर्श के जन्मदिन के अवसर पर उनकर जन्मदिन के शुभकामना भी देवत हवन आदर्श के जन्मदिन के मंगल कामना उनकर पिताजी रविन देवत हवन उनकर माता जी भारती उनकर बहिन दृष्टि और रिया आश्विन फिर शिवम और राम रतन परिवार ललिता जी यही गीत अपन बहिन सुदेवी और ज्ञानी खातिर मंगले हवन छोटी जी प्रभावती जी हरिची और आत्मा राम जी खातिर और सुखलाल मौसी खातिर और माला राम जवन जी खातिर

चिंता ना करे कि जुन जुन सलाह देव थवन सुग्रीम किस्तू जी पर ध्यान दिया जा। ई गाना चिंता ना करे होला हमने से मंगले हवन विद्यावती जी। विद्यावती जी कौन तो खेल से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, खास तौर पर अपन बेटी रवीना खातिर।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने सुनी जा अबरी कुत फ्रिक ऑन फ्लैक के अनीता जी के पसंद के गाना माता पिता के मोल सबको जानेला माता पिता के मोल के बरकरार चला रखे के ईद हमने के चाही माने के चला हमने गीता गजाधर जी के गावाली गाना अनीता जी खातिर बजावा था जा फ्रिक ऑन फ्लैक से अनीता जी अपन सब परिवार और संगत यालो के नाम करत हवनी गाना

और एक गीत हमने बजावत है जा वाकवा के सुदेवी जी के फरमाइश पर। सुदेवी जी गरम गरम दाल कच्चू कुच्चा पीमा के अचार सब परोसे खोजा था वन तो चला सुदेवी जी खातिर ये गाना हमने बजावत है जा उनकर बगर से बजावत है जा त्रियोले के ललिता जी और कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना और मालिका के राम रतन परिवार खातिर चला सुनी जा गरम गरम दाल कचू फिर से।

ये छोटा सा नन्हा सा नवाज़ हमने निर्मल ठाकुर प्रसाद के सुना थे जा, निर्मल ठाकुर प्रसाद के गाना हमने सुना थे जा, नुवेल फ्रांस के गीता, राधा, मीरा और रेणुका जी के पसंद पर।

शत्रुघ्न संजय जी गले हवानी गाना चला हमने साथी और मितवा के बारे में सुनी जा अपन साथी से दुग बात अपन मितवा से दुग बात करत हवन चला सुनी जाए गाना हमने वीना जी के पसंद पर कथो बोन से वीना जी गाना मंगला हवन अपन साथी अपन मितवा खातिर अपन पति राजेश खातिर

सुमन राम तोहल जी आनत हवन अपन गमठ वाला गाना ई हच्ची मामा सुमन राम तोहल जी गमठ तक करते रहेलन चला उनकर गमठ में शामिल हो जाएला जा अभी भी 10:18 होल बा ओरी पार्वती जी के पसंद के गाना चला सुनी जा। ई गाना हमने बजावत है जा पार्वती जी बगल से उनकर बहन रम भावती खातिर।

हमनी के जीवन हमनी के देश में बीतेला। हमनी के देश जहाँ पर आल बा वो आजकल के प्रगति नहीं है, बरसों के प्रगति है। कई बरिस लेक हमनी के पूर्वज लोग दुख सह के हमनी के देश के आगे बढ़ाए के नींव रख ले हवा जा। इन नींव खातिर हमनी अपन पूर्वज लोग के प्रणाम करी जा। किशोर खिमिया जी के गावली गाना सुनी जा और ये गाना हमनी नाम करी जा राधे जी के। राधे जी गाना मंगले हवन अपन सब संग दिया।

शशि सोहादेव जी के गावल गाना चला सुनी जा हमने ये गाना बड़ा उम्दा गाना चला सुनी जा ये गाना हमने विद्या जी के पसीन पर विद्या जी रहे लन्ना कौफुको और ये गाना मंगल हवन अपन माता पिता का तिर उनकर माता जी हवन रेणुका उनकर पिताजी हवन जयराज इनकर नाम करते हवन ये गाना चला सुनी जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चला तड़का तो लगाते हैं जा तनी सन जस्ती स्वाद से तड़का लगा देला जा। श्रीमती जी सुयाग से जन गाना मंगले हवन ओह संतोष महादेव जी के गावल गीत है। श्रीमती जी गाना मंगले हवन चंद्रमुनि परिवार खातिर, महेश परिवार खातिर और अपन सब संगति आलोक खातिर।

कृष्ण उकज जी, कृष्ण उकज जी नारी के बहुत आदर भावना से गीत प्रकट कर ले हवन, ये गीत नजर कर ले हवन। चला ये गाना हमने बजवाए ला जा अमृता जी खातिर, पितों से अमृता जी बगल से, उनकर नातिन लोग खातिर सोनिया और परी, उनकर बेटा विशान और पतु मीनाक्षी खातिर, और उनकर बेटी पूनम खातिर।

चंद्रदेव जुबोधन जी के गावल ही गाना, राकेश जी गाना मंगले हवन पुलाव जैसे, और ये गाना अपन भाई विद्यानंद खातिर मंगले हवन।

और अब चला सुनी जा हमने के आज के अंतिम गाना। अंतिम गाना भोजपुरी गमट है। भोजपुरी के गमटवा तो होते रहेला हमने के देश में, भोजपुरी गमट के बड़ा बोलबाला बा। चला ई गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए और ई सुनब जहाँ सुनत है जहाँ हमने रोशन सदा सिंह जी के गावल ई गाना। ई गाना के संगे हमने के जन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम समाप्त हो, ओकर बाद चला सुनब जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम। और सुनहरे पल कार्यक्रम में आज सुनिए जा हमने के पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम। और ये गाना सुनिए जा गिरिशा की प्रस्तुति में। आओ थला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुनहरे पल में हमारे सारे म्यूजिक लवर्स का फिर से एक बार स्वागत है। गुड इवनिंग जी, नमस्कार, और किनिशा का प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? उम्मीद करते हैं तबीयत ठीक है, आपका दिन अच्छा गया हो और आगे अच्छा ही जाएगा। आप फिक्र मत करना, हम दिल से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, सुनहरे पल की शुरुआत हो चुकी है आपके और हमारे बीच में, और इस एक घंटे की सफ़र में हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही गिने चुने गाने। सो बस तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: ऐसे जिंदगी में कुछ यादें हम कितने भी कोशिश करें भूल नहीं पाते हैं, है ना, दिल में चाप छोड़ देते हैं। और शायद भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ मेमोरीज हमें हंसाते हैं, एक स्माइल लेकर आते हैं हमारे होंठों पर। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही काफ़ी इमोशनल बना देते हैं, और कुछ हमें याद दिलाते हैं कि हमने लाइफ में कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं। आज का म्यूजिक उन्हें यादों के नाम, सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गाने की एक खास बात है, उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं फीलिंग्स होती हैं, एक सिंपल सी मेलोडी, एक सिंपल सी मेलोडी भी दिल में बहुत कुछ कह जाती है। शायद इसीलिए डिकेड्स बढ़ जाते हैं और बदल भी जाते हैं। लता जी, रफ़ी साहब जो हैं, किशोर दा एंड आशा जी और इतने सारे लेजेंड्स के गाने को उतनी ही मोहब्बत से हम आज भी सुन लेते हैं। ये है एवरग्रीन म्यूजिक का मैजिक और यही मैजिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

दोस्तों गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा याद रखना, लाइफ में हर पल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं कि हम उन्हें हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखते हैं ना। आज उन्हें मोमेंट्स को याद कीजिए, स्माइल कीजिए, अपने जो सबसे दिल के करीब हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए और थैंकफुल रहिए कि लाइफ ने हमें इतने ब्यूटीफुल मेमोरीज दिए हैं। आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, जहां पे आके हर पल को हम खूबसूरत और भी बना देते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे दोस्तों, आज की बिजी दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, एक कप चाय, कॉफ़ी, थोड़ा सा पीसफुल मोमेंट और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हम लेकर आए हैं, पुरानी बॉलीवुड के गाने ऑन रेडियो मॉरिशस, बस मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टू टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम योर हेक्टिक लाइफ और एंजॉय कीजिए सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते कब वक्त हो गया है टाटा बाय बाय बोलने का, हमें पता ही नहीं चला। इजाजत दीजिए कि निशा को फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रही।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: कभी हमने नहीं

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

दिल में वो आग उधर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम।
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम।

0: हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया।
1: सांसों में मिठिया